जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

जय हिंद। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये स्पेशल कार्यक्रम है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पुरखों की, यानी हमारे पितरों की। दोस्तों, 16 दिन के ये स्पेशल जो दिन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी पितृ पक्ष को मनाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम भी ये बनते हैं। क्या होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्णा और हम बात कर रहे हैं पितरों के बारे में, पितृपक्ष के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि पितृदोष हो गया है, बच्चे की कुंडली में पितृदोष है, परिवार की कुंडली में पितृदोष है, लड़की की कुंडली, लड़के की कुंडली, घर में ही पितृदोष हो गया है। सुना है आपने? कई बार ज्योतिष या पंडित ऐसा बताते हैं। क्या होता है पितृदोष? कई बार अगर आपको ये लगता है कि पितृ कोई दोष दे रहे हैं, आपको कोई परेशान कर रहे हैं, तो गलतफहमी है। पितर कभी भी कोई दोष नहीं देते, हमारे पूर्वज कभी भी हमको श्राप नहीं देते। ये जरूर है कि जब वो कमजोर होते हैं, उनके पास शक्ति नहीं होती, तो वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे पाते और यही कहलाता है पितृदोष। यानी कि जो पितरों का भाव है, जो उनकी ताकत है या जो शक्ति है, वो क्षीण हो गई है, कमजोर हो गई है और उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो अपने लिए भगवान से आराधना या प्रार्थना कर सके। इसीलिए गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जो वैतरणी नदी को जो पार करने का सिस्टम होता है ना, तो उसमें हमको ही, परिवार को ही, बच्चों को ही उनके लिए श्राद्ध करना होगा, पूजा करनी होगी। इसीलिए दोस्तों, अपने पितरों के लिए इन 16 दिनों के साथ साथ बाद में भी यदा कदा आपको गंगा स्नान करना चाहिए, उनके लिए भोजन या गाय को, कोए को, किसी भूखे को, किसी गरीब को जरूर कराना चाहिए आपके पितरों के नाम से, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उनको ताकत मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी और जब वो बलवान होंगे, शक्तिशाली बनेंगे आपके पितर, तब वो ब्लेसिंग्स आप ही को आशीर्वाद देंगे और जब वो आपको आशीर्वाद देंगे तो आपके जीवन से जो नीरसता है, जो ये बहुत सारी परेशानियां हैं, जो ये अस्पतालों के और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो लगातार घर में आर्थिक तंगी या हानि होती रहती है, या लगातार घर में दरिद्रता का वास रहता है, इन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आसान भाषा में समझते हैं कि पितृपक्ष जो ये होते हैं 16 दिनों के, ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हमें अपने पितरों को याद जरूर करना चाहिए पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ।

जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। पितृपक्ष चल रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं पितरों की, और पितरों की बात मैं इसलिए भी प्रेफर करता हूँ बात करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि ना पितर हमारे जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं, सबसे मजबूत पिलर होते हैं वो हमारे जीवन का, जीते जी भी और मरणोपरांत भी। जब हमारे पूर्वज हमारे साथ होते हैं तब भी, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, अगर उनका आशीर्वाद है तो हम अपने आप में ताकतवर महसूस करते हैं। अगर वो इस संसार में अब नहीं भी है तब भी अगर आप ऐसा मानकर उनको पूजेंगे, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी है ठीक रहे, उनके नाम से भोजन किसी भिखारी को, किसी भूखे को, गरीब को, कोए को, गाय को, कुत्ते को खिलाते रहेंगे तो उनको शक्ति प्राप्त होती है, भगवान उनको जो है कृपा करते हैं उनके ऊपर। आपको ऐसा मानना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि पितृ दोष जो होता है, पितृ श्राप दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पितृ बिगड़ गए हैं, ऐसा सच में होता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस भक्ति संगीत के बाद।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, यह है सुप्रभातम। और जैसा कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध के बारे में। तो बहुत से लोग ऐसा कई बार बोलते आपको मिल जाएंगे कि पितृ दोष हो गया है, तो पितृ श्राप दे रहे हैं, पितृ परेशान कर रहे हैं, पितृ बिगड़ गए हैं। ऐसा जो लोग भी बोलते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि हमारे धर्म शास्त्रों में श्राद्ध न करने वाले परिजनों के संबंध में कठोर मान्यताओं का भी उल्लेख मिलता है, खास तौर से गरुड़ पुराण में। जब भी आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी डिटेल जरूर मिल जाएगी। कहा जाता है कि पितर ऐसे परिजनों को श्राप दे सकते हैं। उपनिषदों में भी देवताओं और पितरों से संबंधित कार्यों में प्रमाद न करने की बात कही गई है। इसीलिए श्राद्ध को दिवंगत माता पिता या अपने दादा दादी या पूर्वजों के पुण्य स्मरण और उनके प्रति श्राद्ध या श्रद्धा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। श्राद्धकर्ता को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये गरुड़ पुराण में भी डिटेल मिलती है। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि मृत्यु के उपरांत जब मनुष्य अपना ये स्थूल शरीर छोड़ता है और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, यानी कि आत्मा अगली राह पर निकलती है, अगले रास्ते पर निकलती है, तो वैतरणी नदी पार करनी होती है, जिसकी डिटेल आपको गरुड़ पुराण में देखने के लिए मिलती है। वहां पर कोई भी दिवंगत आत्मा अपने लिए भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में यह बताया जाता है कि परिवार की, पुत्रों की, पूरे खानदान की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिवंगत आत्माओं की कामयाबी के लिए या उनका वो वैतरणी नदी आसानी से पार हो जाए, उनको प्यास लगती है, उनको भूख लगती है और कर्मों के आधार पर ही वहां खाने पीने के लिए मिलता है। तो हो सकता है किसी ने जीवन में पुण्य कर्म ना किए हो, पाप किए हो, ऐसे में वो भगवान से अपने लिए कोई विनती नहीं कर सकते। तो ये बच्चों की, परिवार की, खानदान की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पिंडदान करें, हम तर्पण करें, हम उनके नाम से किसी भूखे गरीब गाय, कुत्ते या कोई को भोजन कराएं, चींटियों को भोजन कराएं, ताकि भगवान उस भोजन को वहां तक पहुंचा सके। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या वो अब यहां पर भोजन करने के लिए आते हैं? नहीं, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में, ऐसा पता चलता है, बताया जाता है कि गंध जो होती है, जो खुशबू होती है गंध, उस गंध को हमारे पितृ प्राप्त करते हैं और इससे उनको तर्पण मिलता है। इस बारे में और भी बात करेंगे इस भक्ति संगीत के बाद।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी।

0: टेलीको सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत करता हूं, मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, 16 दिनों का ये बहुत ही अलौकिक समय होता है। बहुत से लोग आपको ये कहते सुनते मिल जाएंगे कि क्योंकि पितरों का पक्ष चल रहा है या आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, नए काम मत करो, नई चीजें मत खरीदो, घर की नींव मत रखो, कपड़े मत खरीदो, ऐसी बहुत सी रूढ़ीवादी सोच आपको देखने के लिए मिल जाएगी। गरुड़ पुराण में और ऐसे मैमथ पुराण में या वास्तुशास्त्र में, ज्योतिषों में, ऐसे बहुत सी जानकारियां आपको मिलेंगी जब आप डीप जाएंगे, जब आप समझेंगे कि पितृपक्ष ही सबसे मजबूत समय होता है किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए। अगर आपको पितृदोष नजर आता है, पितृदोष जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी किसी इंसान को पितृदोष के लक्षण दिखाई दे तो उन्हें अपने पितरों को तर्पण करने के लिए गंगा जी पर जाकर स्नान करना चाहिए, गाय को भोजन कराइए, अपने घर में हवन कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए, भगवत पाठ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की गीता का पाठ कीजिए, अपने पितरों को डेडिकेट करते हो, ऐसे हाथ में जल लीजिए और जल में ये संकल्प लीजिए कि ये जो पाठ, ये जो गायत्री पाठ या जो भगवत पुराण या भगवान कृष्ण की गीता या जो भी आप धार्मिक ग्रंथ से कुछ पढ़ रहे हैं, इसका फल मेरे पितरों को मिले और उस जल को छोड़ देना चाहिए। यह होता है संकल्प। अब आप जो भी पूजा करते हैं, जो भी भोजन, जो भी दान पुण्य करते हैं, उसका सारा फल आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को जाता है। गरुड़ पुराण में इसकी डिटेल मिलती है कि जो लोग, जो परिवार ऐसा करते हैं, इससे उनके भी जो पाप कर्म होते हैं उनकी कटौती होती है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी जब आप अपने पितरों के लिए कोई कर्म करते हैं तब सिर्फ आप अपने पितरों के लिए नहीं कर रहे, इसका फल आपको भी मिलता ही मिलता है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं वास्तु कृष्णा। भारतीय परंपरा में श्राद्ध दिवंगत पूर्वजों से भावनात्मक जुड़ाव की एक सूक्ष्म पद्धति है, जिसके माध्यम से एक अलग आयाम में स्थित जिनके पास अब शरीर नहीं है वो आत्माएं पृथ्वी पर अपने प्रियजनों के द्वारा किए गए भावपूर्ण श्राद्ध या ये जो कर्म हम करते हैं इनसे तृप्त होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। यानी जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम जो कि इस वक्त भौतिक जीवन में हैं, सफलता सुख समृद्धि ये सब हमको मिलती है हमारे पितरों से। भारतीय ऋषि महर्षियों ने अपनी साधना और अनुभूति के आधार पर जीवन मृत्यु चेतना और पितृ परंपरा से जुड़े उन रहस्यों की खोज की जो भौतिक जगत विज्ञान की सीमाओं से कहीं ज्यादा आगे हैं, यानी जिन्हें आसानी से कोई समझ नहीं सकता, लेकिन भावनात्मक रूप से जब आप समझने बैठेंगे तो आपको अपने पितरों का साक्षात्कार भी होगा, उनकी फीलिंग्स भी आपको हो जाएंगी, आपको फील होगा कि वो आपको समझ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं और आपके द्वारा किए गए कर्म उन तक पहुंच रहे हैं।

0: प्रतीति कपि भजे सदा धरे उर ध्यान, तैके कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान।
1: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

हिंद वंदे मातरम, आपका स्वागत है। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्वागत है आप सभी का सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। इसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। जी हाँ, विटामिन B12 सब जानते हैं इसको, लेकिन इसकी कमी से क्या होता है, क्यों होता है, कितना खतरनाक हो सकता है, आज के एपिसोड में यही जानकारी।

सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में मैं हूँ वास्तु कृष्ण आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जिसकी कमी कई बार शरीर में चुपचाप बढ़ती रहती है। शुरुआत में लगता है बस थोड़ी कमजोरी है, थकान है, काम करने का मन नहीं कर रहा, कभी हाथ पैरों में थोड़ी झंझनाहट या सुन्नपन होना, कभी चक्कर आना। हम कहते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई है, शायद काम ज्यादा हो गया था, शायद डिप्रेशन, तनाव या स्ट्रेस हो गया है। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन छोटी छोटी परेशानियों के पीछे विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है, याद रखिए। और B12 की कमी वाले को हल्के में बिल्कुल भी ठीक नहीं है लेना, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ खून से नहीं होता बल्कि हमारे दिमाग और नसों के स्वास्थ्य से भी होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा B12 की कमी, कारण, इसके लक्षण और इससे बचाव यानी इसका ट्रीटमेंट।

0: जी हाँ दोस्तों, यह सेहत सही लाभ गई वास्तु कृष्णा के साथ है आप सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। विटामिन B12 आखिर है क्या, इसकी कमी क्यों होती है, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कमी कितने समय में सामने आती है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, कौन सी जांच करानी चाहिए, क्या खाना चाहिए और सबसे जरूरी इलाज कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। B12 हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? दोस्तों विटामिन B12 शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में, DNA बनाने में, नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों के सही कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में एक तरह की एनीमिया हो सकती है, यानी समस्या सिर्फ एनीमिया तक नहीं रहती, कुछ लोगों में नसों से जुड़े लक्षण एनीमिया से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि B12 की कमी आखिर होती क्यों है? सबसे पहला कारण है खाने में पर्याप्त B12 न मिलना। B12 प्राकृतिक रूप से मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और दूध दही जैसे पशु आधारित खाद्य पदार्थों में मिलता है। जो लोग लंबे समय तक पूरी तरह से शाकाहारी या वीगन भोजन लेते हैं उनमें B12 की कमी सामने नजर आने लगती है। दोस्तों पुराने जमाने में याद होगा कि हम अपने खेत से कुछ मूली गाजर ऐसे कर सीधा खा लिया करते थे, है ना? तब केमिकल इतने ज्यादा नहीं होते थे, कीटाणुओं से हम लोग इतना ज्यादा नहीं डरा करते थे। मिट्टी में B12 होता है दोस्तों, और मांसाहार होता है जो मांस से जुड़ी जैसे अंडा, मछली या जो भी मीट वगैरह के ऐसे खाने के प्रोडक्ट होते हैं लोगों के, उनमें B12 इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग ना मिट्टी, घास ये सब ज्यादा खाते रहते और मिट्टी उस माध्यम से उनके अंदर चली जाती है, ऐसा माना जाता है। तो बात अब यह है, B12 की कमी सिर्फ कम B12 खाने से नहीं होती। कई बार व्यक्ति अच्छा खाना खा रहा होता लेकिन फिर भी शरीर B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि हमारा जो शरीर है वो ठीक से पाचन क्रिया नहीं कर रहा है, तब भी B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि भोजन से B12 को शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए पेट और आंत की एक पूरी प्रक्रिया की जरूरत होती है। पेट में बनने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर B12 के एब्जॉर्प्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर पेट या छोटी आंत से जुड़ी समस्या है, कुछ प्रकार की सर्जरी हुई है या शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो भोजन पर्याप्त होने के बावजूद भी ये कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से भी B12 एब्जॉर्प्शन प्रभावित हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिंस और मेटफॉर्मिन। इसका मतलब ये नहीं कि इन दवाओं को अपने आप बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसी दवा लेते हैं तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ भी B12 एब्जॉर्प्शन की समस्या ज्यादा देखी जा सकती है और कुछ लोगों में इसकी समस्या तब भी ज्यादा नजर आती है जिनका पेट अक्सर खराब रहता है। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है, तब 100% आपके अंदर कमी आएगी B12 की। आगे इस बारे में और बात करेंगे।
1: स्मार्ट NGO प्रस्तुत करता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है मेरठ का नंबर 1 सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में स्मार्ट एनजीओ की जो एक खास प्रस्तुति आप सुन रहे हैं। आज हम विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि विटामिन B12 काफी खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपके अंदर कमी आ जाए तब। दोस्तों अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, लक्षण। आपको पता कैसे चलेगा कि B12 की कमी हो गई है हमारे शरीर में? लगातार थकान और कमजोरी होना, लेकिन इसके साथ कुछ और भी संकेत होंगे, क्योंकि थकान और कमजोरी तो कई मामलों में होती है। हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन होना, कई बार आपको लगेगा कि आपका हाथ सो गया है, पैर सो गया है, झंझनाहट जैसा महसूस होगा, है ना? अगर ये होता है B12 की कमी है। चलने में संतुलन की समस्या, बैलेंस बनाने में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। मांसपेशियों में कमजोरी, आपकी पकड़ कमजोर हो जाना, है ना? आपको फील होगा कि अब उतनी ताकत नहीं रही शरीर में, जबकि मैं खाता पीता भी ठीक हूं, ऐसा फील होगा आपको। चक्कर भी कभी कभी आ सकते हैं, अचानक आप उठकर खड़े हो या बैठे हो तब अचानक आपको चक्कर आ सकता है। चलने में थोड़ी सी दूर चले, थोड़ा सा ही जीना चढ़ा, सांस फूल सकती है। दिल की धड़कन बहुत तेज कभी कभी महसूस हो सकती है। बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तब आपको अचानक से एकदम तेज दिल धड़कता हुआ महसूस हो सकता है। आपकी त्वचा पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी जीभ में भी दर्द, तालीमा वैया हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, भूख कम लगेगी, वजन कम हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, सबसे आसान उदाहरण आपको बताता हूं, याददाश्त। अगर आपको लग रहा है कि आप चीजें भूल रहे हैं, ज्यादा भूल रहे हैं, लोगों के या जगहों के नाम भूल रहे हैं, तब याद रखिए, ध्यान रखने में परेशानी, किसी की बात को ध्यान से सुनने में परेशानी, अभी एक ही मिनट पहले कोई बात हुई और आप उसे भूल गए, आप जगह का नाम भूल गए, आप बात करते करते भूल गए, यकीन मानिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है, ये लक्षण है विटामिन B12 के बारे में। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि इन सभी लक्षणों से कभी ना कभी मैं भी दो चार हुआ था, तब मुझे भी पता चला कि ये B12 की कमी है। दोस्तों अगर याददाश्त में कमजोरी आ गई है, मतलब आपको याद नहीं रहता, 2 मिनट 5 मिनट पहली बात भूल गए, कमरे में घुसे किसी चीज को लेने के लिए और भूल गए क्यों आए थे, किसी से बात करते करते कोई बात भूल गए और बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रही है, लगातार कमजोरी होना, हाथ में, हाथ की किसी भी उंगली में, पैर में झंझनाहट, चींटियां चलने जैसा फील होना, चक्कर आना, उठकर अचानक से बैठे या बैठकर अचानक से उठे तब भी चक्कर आ जाना, और एकदम से आपको झंझनाहट महसूस होना पूरे शरीर में, ये लक्षण है विटामिन B12 की कमी के। कुछ लोगों के मूड में भी बदलाव आते हैं दोस्तों, भ्रम और सोचने समझने में भी परेशानी हो सकती है, भ्रमित हो जाते हैं कई बार। विटामिन B12 दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, इसीलिए ये सारी समस्याएं होती है। अगर हाथ पैर में लगातार झंझनाहट सुन्नपन हो रहा है तो इसे सिर्फ कमजोरी समझ के नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक B12 की कमी रहने

पर हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और कुछ न्यूरोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये समस्याएं कई बार ऐसी बढ़ सकती हैं कि कभी ठीक भी ना हो पाए। दिमाग के अंदर अगर ये खराबी ज्यादा आ गई तो शायद फिर कभी इसे ठीक भी ना किया जा सके। इसीलिए इन लक्षणों के आधार पर तुरंत के तुरंत अपने B12 का इलाज करवाइए। लेकिन B12 की कमी कितने दिन में हो जाती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कि ये तो लक्षण है जो हमको नजर आ रहे हैं। B12 ऐसा कोई विटामिन नहीं जिसकी कमी 2-4 दिन में नजर आनी शुरू हो जाए या 2-4 दिन में ही कमी आ गई है तुरंत लक्षण दिखाई देने लगे, ऐसा नहीं होता। विटामिन B12 काफी बड़ा भंडार जमा करके रखता है अपने शरीर में, जो हमारे शरीर में ना भंडार होता है। लेकिन ये कमी नजर आने हो गई है शुरू, लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तब समझ लो अंदर मामला खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को आज B12 कम मिला तो जरूरी नहीं कि कल उसके हाथ पैर सुन हो गए होंगे या चक्कर आना शुरू हो जाएगा। B12 डेफिशिएंसी के लक्षण कई वर्षों के बाद दिखाई देते हैं, यानी आज की परेशानी का कारण कई बार लंबे समय तक चल रही कमी हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर। सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। अगर हाथ पैरों में लगातार झंझनाहट, सुनपन है, चक्कर आना है, याददाश्त कमजोर हो रही है तो समझ लीजिए B12 की कमी हो चुकी है। और ये कोई 2-4 दिन में नहीं होती, हमारा शरीर B12 का भंडार हमेशा जमा करके रखता है। लेकिन अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है या कोई और समस्या है, तो ऐसे में B12 लगातार घटता चला जाता है और इसके लक्षण ही सालों साल बाद वापस आते हैं। और B12 की लगातार डेफिशिएंसी के कारण आपके दिमाग में कई प्रकार की कमियां आ सकती हैं, जैसे नींद ना आना, याददाश्त का कमजोर होना, आपका नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है डॉक्टर्स के अनुसार। इसीलिए दोस्तों सिर्फ ये सोचकर कि मैं तो खाना खाता हूं, B12 की कमी भला कैसे हो सकती है, समस्या को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अब सवाल है कौन सी जांच करानी है। अगर आपको लगता है लगातार थकान, कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट, जीभ में समस्या, याददाश्त या संतुलन से जुड़ी कोई परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर डॉक्टर के अनुसार जांच करवाइए। आमतौर पर शुरुआत में डॉक्टर CBC यानी के कंप्लीट ब्लड काउंट और सरनम विटामिन B12 की जांच करते हैं और CBC से हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाओं की स्थिति का पता चलता है। B12 डेफिशिएंसी में लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य से ज्यादा बड़ी नजर आती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आपको इस लक्षण को या B12 की कमी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, डॉक्टर जो टेस्ट बोले वो करवाइए। पता चलने पर, कंफर्म होने पर आपको सबसे बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा हो जाएगा कि आपको खाना क्या है। एक तो डॉक्टर जो दवाइयां बताएंगे वो आप खाइएगा जरूर। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो B12 के अच्छे प्राकृतिक स्रोत होते हैं मछली, मांस और अंडे। इसके अलावा दूध और डेयरी उत्पादों में भी B12 होता है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन है या वीगन है तो B12 फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं, यानी जिन खाद्य पदार्थों में B12 मिलाया गया हो उनका उपयोग कीजिए। ऐसे खाद्य पदार्थों के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल जरूर देखें और पढ़ें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ भोजन से हर व्यक्ति की B12 डेफिशिएंसी ठीक हो जाए ये जरूरी नहीं। अगर कमी का कारण एब्जॉर्प्शन की समस्या है या कमी काफी ज्यादा है तो डॉक्टर सप्लीमेंट या इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। और अब दवा की बात करते हैं। बाजार में B12 की कई टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन मैं आपको यहां रेडियो पर बैठकर किसी दवा के बारे में नहीं बता सकता, इंजेक्शन के बारे में नहीं बता सकता। मैं आपसे बस ये बता सकता हूं कि अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बताएंगे कि आपके शरीर में कितनी कमी है और आपको किन दवाइयों, इंजेक्शनों, गोलियों या कैप्सूल की जरूरत है या सिर्फ ये खाने पीने से ठीक हो सकता है, किस लेवल का B12 कम है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको याददाश्त में लगातार कमजोरी, चक्कर आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, लगातार कमजोरी होना, नींद की बहुत ज्यादा कमी होना, ये लक्षण है B12 की कमी के। और B12 लगातार कम होता चला गया तो इससे आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, ये भयानक हो सकता है दोस्तों। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, ये कोई मामूली खून की कमी नहीं होती, ये बहुत भयंकर रूप धारण कर सकती है। सिर्फ B12 की कमी समझकर खुद से फोलिक एसिड शुरू मत कीजिएगा, डॉक्टर के बताए सुझाव पर ही दवाइयां और खाना पीना शुरू

कीजिएगा। किन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए? ऐसे लोग जो लंबे समय से वेजिटेरियन या वीगन डाइट लेते हैं और B12 का पर्याप्त सोर्स उनके पास नहीं है, बुजुर्ग लोग जिन्हें पेट और आंत की समस्या रहती है, नौजवान लोग, लड़के लड़कियां भी, महिला पुरुष भी जिनका पेट कभी ठीक नहीं रहता, हर मामले में उनके अंदर भी B12 की कमी होगी क्योंकि आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं है।

सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है और आज के कार्यक्रम में B12 की कमी के बारे में हमने बात की है। दोस्तों, मैंने आपको लक्षण बताए, उदाहरण बताए, शरीर में क्या क्या समस्या हो सकती है, क्या क्या आपको उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके परिवार में भी किसी को ऐसा हो रहा है तो याद रखिये, ये कोई मामूली बीमारी नहीं, ये B12 की कमी है। हाथ पैरों में झंझनाहट होना, चक्कर आना, थकान होना, जिनका पेट खराब रहता है उनके अंदर भी ये कमी होती है। और दो दिन में पकड़ में आ जाए ऐसा भी नहीं होता, सालों साल बाद तो लक्षण सामने आते हैं। इसीलिए आपको सप्लीमेंट, दवाइयां, कैप्सूल, गोली लेने पड़ सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, आप अंडा, मछली इत्यादि खा सकते हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तब डॉक्टर के बताए अनुसार आप उन चीजों को जरूर खाएं। दवाइयां, गोलियां, कैप्सूल या इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी ना होना नहीं होता, स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर के संकेतों को समय से समझते रहना। तो आज का संदेश बिल्कुल साफ है, संतुलित भोजन लीजिए, लक्षणों को नजरअंदाज मत कीजिए, जरूरत हो तो CBC और विटामिन B12 जैसी जांच डॉक्टर की सलाह पर कराइए। बॉर्डरलाइन या संदिग्ध स्थिति में आगे की जांच डॉक्टर तय करेंगे कि भाई पकड़ में नहीं आ रहा है तो डॉक्टर कुछ और भी जांच आपको बता सकते हैं। और दवा या इंजेक्शन खुद से नहीं लेना, डॉक्टर के अनुसार ही लेना है। थकान को हमेशा किस्मत मत मानिए कि मैं तो हमेशा थका हुआ ही रहता हूं, किस्मत ही ऐसी हो गई है, इसको बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। झंझनाहट को हमेशा उम्र का असर मत मानिएगा, मेरा तो हाथ पैर सो ही जाता है, उठता हूं बैठता हूं तो चक्कर आ ही जाता है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल या कॉमन नहीं है दोस्तों। और कमजोरी को हमेशा काम का तनाव या डिप्रेशन या स्ट्रेस मत समझिए, कभी कभी शरीर बहुत धीरे से हमें एक संदेश दे रहा है, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा आपको सोचना चाहिए। उस संदेश को सुनिए, अपने शरीर की बात को समझिए, समय पर जांच कराइए और स्वस्थ रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका अपना वास्तु कृष्णा, चलते चलते आपसे बस यही कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, जागरूकता बीमारी से पहले की सुरक्षा है और समय पर जांच स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समझदारी। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ये थी खास प्रस्तुति स्मार्ट एनजीओ की, सेहत से ही लाभ कई।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो एफएम सुभारती मेरठ। दोस्तों मुझे यहां कर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ्री दवाई भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि टीवी की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाएं और इस बीमारी से लड़ें, छुटकारा पाएं, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी को भी टीवी की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इसका इलाज फ्री करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आजाद हिंद रेडियो सुभारती एफएम मेरठ। धन्यवाद।
1: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गांव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे, तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
2: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आप सुन रहे हैं इस खास कार्यक्रम को जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। ये तो मैं आपको कई बार पहले भी बता ही चुका हूँ।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक ऐसी समस्या जिसे अक्सर लोग छोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या शरीर को अंदर से कमजोर कर सकती है। जी हाँ, खून की कमी यानी के एनीमिया। और सबसे जरूरी बात, एनीमिया सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं, ये बच्चों को हो सकता है, पुरुषों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि एनीमिया क्या है और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। साथियों, हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तो एनीमिया या खून की कमी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। बार बार थकान महसूस होना, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और काम करने में मन न लगना, चेहरा और त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर से मैं ये लक्षण आपको बता देता हूं। एनीमिया यानी खून की कमी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला, अगर आप बार बार थकान महसूस करते हैं, लगातार कमजोरी फील होती है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है, सांस फूल जाती है, दिल की धड़कन अक्सर तेज महसूस होती है, काम करने में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपका चेहरा अब दमकना बंद हो गया है, चेहरे पर मायूसी लटकी हुई है, त्वचा सामान्य से ज्यादा पीला दिखाई देना शुरू हो चुकी है, ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये सब बच्चे, बुजुर्गों, नौजवानों, महिलाओं सब में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर बार इन लक्षणों का कारण एनीमिया ही हो ये भी जरूरी नहीं। इसलिए जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन की जांच और अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लेना।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो और आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है। आज हम एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी खून की कमी। ये बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, महिलाओं सब में हो सकता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे कि ये हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है। लगातार चक्कर आना, सिर दर्द होना, सांस फूलना, कमजोरी होना, थकान होना, चेहरा अब थोड़ा मायूसी सा भर गया है, ऐसे लटका हुआ रहता है, चिड़चिड़ापन हो गया है, ये खून की कमी के कुछ लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो गई हो। अब बात करते हैं महिलाओं के विषय में। महिलाओं में भी एनीमिया का खतरा कई कारणों से बढ़ सकता है दोस्तों। खास तौर से मासिक धर्म के दौरान ज्यादा रक्त स्राव होना, गर्भावस्था और प्रसव के दौरान। गर्भावस्था में मां के साथ साथ बच्चे के विकास के लिए भी पर्याप्त पोषण होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है और डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी द्वारा दी गई आयरन की फोलिक एसिड वाली दवाई को उन्हें सलाह के अनुसार जरूर लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं पुरुषों के बारे में। अक्सर सोचा जाता है कि पुरुष तो मजबूत होते हैं, कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पुरुषों में भी खून की कमी हो सकती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। अगर किसी पुरुष को लगातार कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना जैसी समस्याएं हो रही है, इसे केवल काम का तनाव, डिप्रेशन या नींद की कमी मानकर मत छोड़ दीजिएगा। डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरुषों में एनीमिया के पीछे आयरन की कमी के अलावा कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं।

जी हाँ, यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो और आज आप सुन रहे हैं यहाँ पर यह स्पेशल कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के कार्यक्रम में एनीमिया यानी खून की कमी के कारण। हमने बात की पुरुषों में कैसे खून की कमी हो सकती है, महिलाओं में कैसे हो सकती है और बड़े बूढ़ों में तो खैर हो ही सकती है, बच्चों की भी बात करते हैं। दोस्तों, बच्चों में खून की कमी उनके शारीरिक विकास, सीखने और रोजमर्रा की सक्रियता को प्रभावित कर सकती है। बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। बच्चा बार बार थका हुआ आपको दिखाई देगा। आप बोलेंगे पढ़ ले, खेल ले, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में और खेलने में। वो लेट जाएगा, फोन देखने में मस्त हो जाएगा, उसको रेस्ट करना ज्यादा आरामदायक लगेगा, अच्छा लगेगा। कमजोरी है ये दोस्तों, खून की कमी है दोस्तों ये। उसका विकास अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हो रहा है और माता पिता को स्वास्थ्यकर्मी अपने डॉक्टर के पास तुरंत बच्चे को लेकर जाना चाहिए। बच्चों के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, चना, राजमा, लोबिया, पौष्टिक अनाज और उपलब्ध स्थानीय पौष्टिक जो भी आपके क्षेत्र में, आपके आसपास या आपके घर पर उपलब्ध है। अगर आप घर में नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसको भी शामिल करें, अंडा वगैरह शामिल करें, दूध दही शामिल करें। आयरन की दवा बच्चों को सिर्फ डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के बाद ही दीजिएगा। अपनी मर्जी से बच्चों को कुछ भी खिलाना शुरू मत कर दीजिए। पहले बच्चे की अच्छे से जांच करवा लीजिए, उसके खून की जांच करवाइए, एनीमिया है या किसी और चीज की कमी हो गई है। बच्चों में आजकल स्ट्रेस की, डिप्रेशन की जो शिकायत वो भी लगातार बढ़ रही है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ कमजोरी और थकान लोगों को अक्सर सिर्फ उम्र का असर मान लेते हैं, है ना। ऐसा होता है कि उम्र बढ़ गई है, बूढ़े हो गए, तो ये तो उम्र के साथ होता ही है। लेकिन लगातार थकान, सांस फूलना, चक्कर आना कमजोरी के कारण हो सकते हैं, एनीमिया के कारण ये बन सकते हैं। इसीलिए बुजुर्गों में ऐसे लक्षण लगातार अगर बने रहे तो समय पर जांच करवाइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। दोस्तों, एक और बात जो बहुत जरूरी है, एनीमिया का मतलब हमेशा सिर्फ आयरन की कमी नहीं होता, इसके कारण और भी होते हैं। इसीलिए बिना जांच के खुद से आयरन की गोलियां खाना मत शुरू कर दीजिएगा, ये सही तरीका नहीं है। तो आसान तरीका क्या है, मंत्र क्या है, पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना। आपको खाना ऐसा खाना है जो बहुत ही पौष्टिक हो, सिर्फ तला भुना या बाजार

मत खाते रहिए, जो जरूरी है वो खाइए, सही समय पर जांच करवाइए, सही डॉक्टर के पास जाकर आपको बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जब डॉक्टर बोले तब दवाइयों को आपको खाना चाहिए। अपने भोजन में दालों का इस्तेमाल कीजिए, चने का इस्तेमाल कीजिए, राजमा, लोबिया, हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार या बाजारों का भोजन कम कर दीजिए। भोजन में विटामिन सी से भरपूर मात्राएं लीजिए, जैसे कि आंवला होता है, अमरूद होता है, नींबू होता है, इनको आप खाइए। आयरन के अवशोषण में मदद कर सकता है ये विटामिन सी, इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग, कमजोरी को हमेशा सामान्य मत समझिए। जरूरत हो तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर या अपने प्राइवेट डॉक्टर से भी आप संपर्क कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन की जांच जरूर करवाइए, ये बहुत मददगार रहेगी आपके लिए। खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती दोस्तों, लेकिन सही समय पर पहचान होना और सही समय पर सही तरीके से इलाज हो जाए तो इससे निपटना बहुत आसान है।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा। स्मार्ट एनजीओ की एक खास प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हमने एनीमिया के बारे में डिटेल में चर्चा की है। यहाँ पर बच्चों में, बूढ़ों में, बुजुर्गों में, नौजवानों में, महिलाओं में, सब में एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। इस समस्या को छोटा मत समझिए। लगातार चक्कर आना, याददाश्त का कमजोर होते रहना, सिर्फ अपनी मर्जी से आयरन की गोलियां मत खाना शुरू कर दीजिए, पौष्टिक भोजन लेना है, सबसे जरूरी अपने डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए, जब डॉक्टर बोले वो खाइए, वो दवाइयां बोले तो दवाइयां खाइए, वो बोले कि अच्छा खाना पीना आपको लेना है तो पौष्टिक भोजन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, खून की कमी छोटी समस्या नहीं होती, लेकिन समय पर इसको समझना, पहचानना और इसको निपटाना बहुत जरूरी है। तो आइए आज एक संकल्प लेते हैं, अपने परिवार में सिर्फ खाना भर नहीं, पोषण भी देखेंगे। सिर्फ चटपटी चीजें नहीं खानी बनानी है, अच्छी चीजें भी बनानी खानी है। पार्टी का भी दिन रख लीजिए, लेकिन रोजमर्रा में आपको अच्छा पौष्टिक भोजन लेना है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें वगैरह खाइए। बच्चे आजकल बहुत जिद करते हैं बाहर का खाना, उनको मोमोज खाने हैं, बर्गर, चाउमीन और ना जाने क्या क्या खाना होता है ना, चिप्स, पैकेट वाली चीजें खानी होती है। पैकेट वाली चीजें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बच्चों को और बुजुर्गों को, याद रखिएगा ये बात, क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी चीजें जो पैकेट बंद आती हैं बाजारों में उपलब्ध होती है, कोशिश करें किसी खास ओकेजन पर बच्चों को पार्टी के लिए किसी एक दिन दे दीजिए। रोजमर्रा में आपके बच्चे में लगातार खून की कमी हो सकती है अगर आप अच्छा खाना उनको नहीं देते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाजारों की चीजों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए, पैकेट बंद चिप्स मत खाइए, पैकेट बंद चीजें, ज्यादा चटपटी चीजें मत खाइए। अपने घर में चिप्स बनवा लीजिए अपनी मम्मी से, अपने घर में अच्छी चाउमीन भी बनवा सकते हैं। देखिए बाजारों में क्या चीज किस तरह की आ रही है नहीं पता, इसलिए घर पर चीज बनवाइए, खाइए और कोशिश कीजिए दालें, प्रोटीन युक्त भोजन, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, अच्छी रोटी वगैरह खाना, इनको शामिल कीजिए। खून की कमी आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिलाएं हो या पुरुष, सभी के जीवन में जरूरी है इसको पहचानना और समय पर इसको समाप्त कर देना। और याद रखिए दोस्तों, कमजोरी को सिर्फ थकान कहकर नजरअंदाज आज के बाद मत कीजिएगा। बीमारी का इंतजार नहीं करना है, समय पर जांच करानी है। स्वस्थ शरीर, मजबूत परिवार, स्वस्थ समाज की शुरुआत हमारे अपने खुद के शरीर से और स्वास्थ्य से होती है। मैं हूं आपका दोस्त वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो, आरजे वंशी इन द स्टूडियो है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:11, 30 सितंबर आज की तारीख और दोस्तों आज है बुधवार और फिलहाल गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब और गुड वाला फॉर्म ऑफ द डे जो कुछ ये कहता है कि सुनिएगा जरा। मनुष्य अपने विचारों से ही निर्मित होता है, वो जैसा सोचता है बिल्कुल वैसा ही बन जाता है एट द एंड। तो ये विचार जो है ये बताता है कि जो हमारा दृष्टिकोण है वो किस तरीके से आपको मोल्ड कर देता है। देखिए, हमारे दिमाग में आने वाले विचार ही हमारे शब्दों, निर्णयों और कार्यों का रूप ले लेते हैं। यदि विचार सकारात्मक है और रचनात्मक है तो परिणाम भी जीवन में सकारात्मक ही दिखाई देंगे, और यदि आप स्वयं को कमज़ोर और असमर्थ मान लेंगे तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगेगी। इसके विपरीत यदि आपकी सोच आत्मविश्वास से भरी है तो बड़ी से बड़ी चुनौती का हल आप निकाल सकते हैं। वहीं लगातार एक ही तरफ के विचार रखने से वो हमारी आदत बन जाते हैं और यही आदतें एंड में हमारे चरित्र और हमारे भविष्य का निर्माण भी करती है। तो इसलिए दोस्तों अपने विचारों पर ध्यान दें, जब भी मन में नकारात्मकता या संदेह आए उसे सकारात्मक सोच में आप बदल दें। सकारात्मक वातावरण, अच्छे विचार और अच्छी पुस्तकें और साथ ही साथ इंस्पिरेशनल लोग आपकी सोच को दिशा देते हैं। कठिनाइयों के समय में मैं ये नहीं कर सकता कहने के बजाय खुद से कहें कि मैं इसे सीखने और हल करने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें और फिर देखिएगा कमाल कि क्या ही हो जाता है। फिलहाल आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है। हाँ, मुझे थोड़ा सा जुकाम है इसलिए शायद आपको थोड़ी सी आवाज़ बदली बदली सुनने को मिलेगी। फिलहाल खलनायक मूवी का बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, इस गाने को इन्जॉय करेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: स्टूडियो है, हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजी वंशी और लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही स्पेशल टॉक शो। और दोस्तों आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, मेरे यानी आरजी वंशी के साथ। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने क्या बात कही है कि सबको चमक दिखाई देती है, मगर वो दिया किस मिट्टी का बना है इसके बारे में लोग अक्सर भूल जाया करते हैं। तो आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ पर कोई सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है, हम अक्सर अपनी जड़ों को, अपने उन मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो हमें एक सच्चा और अच्छा इंसान बनाती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने माया नगरी की चकाचौंध को देखा भी है, जिया भी है, लेकिन अपनी सादगी और संस्कारों को कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के बेहद टैलेंटेड, जमीन से जुड़े और हमारे अपने ऋषि भूटानी जी आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे तो वार्तालाप हमारी पहले भी हो चुकी है, तो देखते हैं कैसा जाता है ये वाला भी।
1: तो ऋषि जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ग्लैमर की इस दुनिया में हर रोज रेगुलर बेसिस पर चमक धमक और चकाचौंध से आपका सामना होता है, ऐसे माहौल में वो कौन सी सीख या मैं कहूँ पारिवारिक मूल्य है जो आपके पैरों को हमेशा जमीन पर टिकाए रखने के लिए कायम है?
2: मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि आपको एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए
1: जी।
2: और जब फैमिली वैल्यूज की बात करते हैं तो फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है कि जब आपको कहते हैं कि ट्राई करो, वो ये नहीं कह रहे कि जीत के आओ, वो कह रहे हैं ट्राई करो। तो जब आप ट्राई करते हैं तो उसमें जीतने की उम्मीद भी छुपी होती है। तो आप जिस भी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप हमेशा चाहेंगे कि उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो, बाजार में उनको जो है गलत तरीके से आपको लेके बोला ना जाए, आपकी चीजें जो आप कर रहे हैं उसको लेके जो है अच्छी बातें ही मार्केट में आए। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी चीज करने जा रहे हैं, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है गलतियां नहीं होती है, मगर कुछ नजरअंदाज हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो आप अपनी फैमिलीज की जो मॉरल वैल्यूज है आप उसका इजाफा करें, उसको आप आगे लेके जाएं बनिस्पत की आप उसके बेइज्जती कराएं। और जल्दबाजी ना दिखाएं क्योंकि कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं मिलती है, हर चीज टाइम लेती है और काफी अच्छा टाइम लेती है। और जितना बड़ा सपना उतना ज्यादा टाइम, और पेशेंस लूज नहीं होना चाहिए। और ये सब बचपन से ही आपके अंदर आना शुरू होता है। आप जब हम बड़े होते हैं हमें पता नहीं होता कि हम ऐसे क्यों बन गए। तो एक टाइम तक तो आप सिर्फ लर्निंग चल रही होती है, वो स्कूल की लर्निंग है, घर की लर्निंग है, मगर आपका वो क्यूमुलेटिव होके आपका एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और फिर आप उसी तरीके से आपकी सोच बनती है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इसी तरीके से बड़ा बना और इसी तरीके से मैं आगे गया और अपनी जो है मैंने लाइफ लीड करनी शुरू करी।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ, स्टे ट्यून्ड।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भूटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: नमस्कार, मेरा नाम शरद है, मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं आरजी वंशी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनका रेडियो प्रोग्राम आजाद हिंद रेडियो डेली सुनता हूँ। मुझे उनका कंटेंट काफ़ी पसंद है। मैं उनसे बात करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है। मैं उनसे अपने थॉट्स डिस्कस करता हूँ, रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनसे बात करके, मुझे उनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है। कई बार उनसे बात करके ऐसा ही फीलिंग आती है जैसे आप अपने किसी घर के सदस्य से बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं रहने वाला मेरठ का ही हूँ। उनसे बातें करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सुनिए उनका प्रोग्राम, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले एक बार उनसे बात कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल घर वाली फीलिंग आएगी।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आई

0: छत्रपति शिवाजी शुभ आरती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
3: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद।

0: वंशी।
1: ऋषि जी, अभी आपने एक बात कही कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी से अगर हमें कुछ मिल जाता है, हालांकि मिलता नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि जो चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है।
2: ऐसा नहीं है, आपके लक के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है कि आप उसकी, कई बार आपकी ट्रेनिंग बचपन से ही चल रही होती है मगर आप उसको रियलाइज नहीं करते हैं
1: जी,
2: तो आप फिर जब उस चीज को कर देते हैं तो लगता है कि यार ये तो एकदम हो गई। तो जल्दबाजी जो है वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज टाइम लेती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लकी हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग मुंबई पहुंचे और उन्हें फर्स्ट सीरियल या फर्स्ट सेट पता लगा 2-4-5 दिन कह लो या महीना कह लो, उन्हें बहुत जल्दी मिल गया। और ये भी हो सकता है कि वो सेकंड काम जो है उसको टाइम लग गया होने में। तो जल्दबाजी तो ये है कि आप पहले तो ये डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है।
1: बिल्कुल,
2: जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होते रहते हैं आजकल जो है कि सब कुछ अभी चाहिए अभी चाहिए अभी, वो अभी होता नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से उस हर चीज टाइम लेगी अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू और डिमांड एंड सप्लाई। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन है तो क्या है कि अब डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है कि एक एक ऑडिशन में वहां 10-10 हजार लोग आ रहे हैं। तो अगर इतने लोग आएंगे तो ऑब्वियसली कि आप उसमें बुरे नहीं है मगर उसमें एक लक फैक्टर भी स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो 5 लोगों में आपका बार बार सिलेक्शन हो रहा है मगर आपका नंबर नहीं लग रहा है।
1: बिल्कुल,
2: इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे एक्टर हो गए। बस ये है कि अभी वो टाइम नहीं आया आपका। तो जल्दबाजी ना करें, अपने क्राफ्ट के ऊपर काम करते रहें, हर मिनट उसी के बारे में सोचें। ये नहीं कि अब अच्छा ये नहीं हुआ तो चलो अब दूसरी चीज कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: फिर वो दूसरी की तीसरी भी होगी और चौथी भी होगी, पांचवी भी होगी।
1: मतलब आपका कहने का ये है कि जो अनसर्टेनिटी है आजकल के इस जनरेशन में, उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है।
2: बिल्कुल, और अपने इर्द गिर्द जो फैमिली है या दोस्त हैं जिनको आप एक्चुअल में दोस्त मानते हैं, उनसे पूछिए कि आपको क्या लगता है मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। इवन टीचर से पूछिए मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो अगर आप सबसे क्यूमुलेटिव एक राय लोगे तो मुझे लगता है कि वो भी आपको बताएंगे कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है आप अपना ऑप्शन उनके सामने रख दो। तो बड़ा डिस्कशन करने से बहुत फायदे होते हैं आप जब फैमिली के साथ बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने बात करनी बंद कर दी है, सब अपने फोन पे लगते हैं। आप घर पहुंचो तो पता चलता है कि सबके पास मोबाइल है, बात कोई नहीं कर रहा है। तो आप एक कॉन्वर्सेशन करिए, एक प्लेस बनाइए। मैं तो कहूंगा कि एक लैंडिंग प्लेस होनी चाहिए मोबाइल के लिए, कि जैसे आप घर पहुंचे एक जगह बस रख दो जैसे बाकी चीजें पड़ी होती हैं, और फैमिली के साथ टाइम बिताना शुरू करिए। आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, इवन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उनके साथ बैठो, वो उनका जो जीवन का सार है वो तो देना चाहते हैं आपको, बल्कि तो उस पे ध्यान दें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही कि किस तरीके से आज की इस भागदौड़ वाली जो जिंदगी है इसमें आपके परिवार की अहमियत और उनका रोल काफी ज्यादा हो जाता है। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता है और ये पता चलता है कि हमें कैसी स्थिति में कौन सा स्टेप उठाना चाहिए।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।

हेलो मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, ऐसा कहा जाता है कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। जब आपको पहली बार सफलता मिली थी, या मैं कहूँ आपको रिकॉग्निशन मिला था, तो आपके माता पिता या जो आपके एल्डर वंस रहे, उन्होंने आपको क्या नसीहत दी जो आज तलक भी आपके साथ है और जब भी आप काम करते हैं वो आपके जहन में जरूर आती है?
2: कुछ भी पर्टिकुलर नहीं। जैसे मैंने बोला कि हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, जब भी मैं कोई चीज करने जाता हूँ मैं वो स्क्रिप्ट भी बताता हूँ फैमिली को कि अच्छा ऐसी स्क्रिप्ट है, इस तरह का रोल है। तो जब भी फिल्म, अभी तक सुपरहिट तो कोई भी मेरी फिल्म नहीं हुई है, जो क्योंकि आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, मतलब अपने आपको, आपका भी फिर इसका मतलब अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। तो जो भी सेमी हिट है उस टाइम पे कि हाँ अब जो भी फिल्म करनी है वो इससे बेटर होनी चाहिए, और जल्दबाजी जो आपने वर्ड यूज किया था वो नहीं होनी चाहिए कि पता लगा इस चक्कर में अब आप बुरी फिल्में करने लग गए।
1: बिल्कुल।
2: तो फेजेस आएंगे, आप गलतियां करते हैं तभी आप सीखते भी हैं। इवन आप जितने भी बड़े लोगों को देखोगे, आप देखोगे कि उन्होंने मल्टीपल मिस्टेक्स करी है।
1: यस।
2: और जो मिस्टेक ही नहीं कर रहा तो वो तो क्या ही जीतेगा उसकी, तो
1: क्या सीखेगा
2: वो तो क्वेश्चन ही नहीं है
1: जी।
2: तो आप हमेशा देखेंगे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बहुत गलतियां बहुत ज्यादा करी होती हैं।
1: हाँ जी।
2: तो आप अपनी गलतियों से सीखो, अच्छी मतलब फिल्मों की ही बात करूंगा
1: जी।
2: तो आप और अच्छी फिल्में जो भी स्क्रिप्ट आती है उनको ढंग से पढ़ो, ये मत सोचो कि यार ये न्यू कमर है इसकी नहीं पढ़नी है। तो कई बार वो न्यू कमर क्या फिल्म बना देगा वो आपको भी नहीं पता। तो हाँ ये तो है ही।
1: बहुत सही कहा आपने कि न्यू कमर को हम कभी कभी ऐसे इग्नोर कर देते हैं या इस चीज के बारे में नहीं सोच सकते कि उसकी स्क्रिप्ट भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है और एक ब्लॉकबस्टर हिट हो सकती है। तो किसी को मौका देने से पहले एक तो जजमेंटल ना बने, है ना।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

देवंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, एक अभिनेता के तौर पर क्या आपको ऐसा लगता है कि जो काम आप पर्दे पर करते हैं, जो रोल आप पर्दे पर निभाते हैं, उसकी समाज के प्रति कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे रोल को मना किया है जो आपको लगा आप अपने अंतर मन से कि मुझे नहीं करना चाहिए, इससे कुछ नेगेटिव इम्प्रेशन मेरा जाने वाला है?
2: मेरा बड़ा ही पर्सनल मानना है कि जितनी फिल्में आती हैं वो समाज का कहीं ना कहीं हिस्सा होती हैं, उसको हम पर्दे पे लाते हैं। कुछ इमेजिनरी फिल्म होती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी फिल्म देखेंगे तो उसमें आप फ्लाइंग कार्स भी देखोगे जो अब आ चुकी हैं, है ना। ऐसी आपने बहुत सारी मशीन गन्स देखी होंगी, टैंक्स देखे होंगे जो फिल्मों में लगे कि यार ये तो कभी होगा ही नहीं। तो इवन कार्स, जेम्स बॉन्ड की अगर आप कार्स की बात करो तो उस टाइम पे लगता है वाह यार ऐसी गाड़ियां कब आएंगी, अब रोड पे हैं। तो फ्यूचरिस्टिक अगर हम बात करें, और इवन हम अगर बात करें समाज से रिलेटेड फिल्म्स की, वो हमारे है तो आए नहीं, हमारे इर्द गिर्द वो सब चीजें चल रही हैं और वो ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि आप फिल्में कमर्शियल होनी चाहिए।
1: अच्छा।
2: बहुत लोग कहते हैं रियलिस्टिक फिल्म्स, मेरे को तो सिनेमा हो सकता है कि इसलिए बॉलीवुड थोड़ा पीछे भी हो रहा है। क्योंकि हम रियलिस्टिक की तरफ चले गए, लोग ऑलरेडी रियलिस्टिक हैं।
1: यस।
2: तो लोग अब लार्जर देन लाइफ चीजें देखना चाहते हैं।
1: यस।
2: जो इर्द गिर्द हो रहा है वो तो खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं,
1: कॉमन हो चुका है।
2: और मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल है, वो नेक्स्ट लेवल का साउंड देखना चाहते हैं, वो स्क्रीन पे जो बड़ी बड़ी चीजें आप दिखाना चाहते हैं, अलग विजुअल्स क्रिएट करना चाहते हैं बड़े, तो उसके लिए ऑडियंस जाना चाहती है कि यार ऑलरेडी इतना मेंटल प्रेशर है तो मैं वो रिलीज कर सकूं। तो फिल्म में तो हाईली एंटरटेनिंग होनी चाहिए, धमाल कमर्शियल होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रियलिस्टिक सिनेमा कुछ, हर चीज मोबाइल में है आज की डेट में, मतलब अब आपको ना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे, पहले एक ऐसा टाइम था कि एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यहाँ हम बात कर लें कि दूरदर्शन होता था, वहीं से लोग रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, मगर अब इतना वास्ट पूरा वर्ल्ड आपके पास खुल चुका है, इवन ओटीटी आ चुका है। अब हमारा कंपैरिजन बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं रहा है, ना इंडियन फिल्म से रहा है, अब हॉलीवुड फिल्म है, कोरियन फिल्म है, जैपनीज फिल्म है, अब सबका कॉम्पिटिशन है हर फिल्म के साथ। अब आप एनिमेशन किस लेवल का क्रिएट कर रहे हैं, अब जिसने एवेटार देख ली, अब आप उससे कम का अगर आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट करोगे तो यार एवेटार को कहोगे कि यार हम तो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। नहीं, हर चीज अब कंपैरिजन में है। आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे, अमेजोन खोलेंगे, हर चीज उस पे, तो अब कंपैरिजन नेक्स्ट लेवल है। बस ये है कि आपके जो हमारा कल्चर है, जिसकी हमने पहले भी बात करी, हम अपने कल्चर को ना छोड़ें। अब हो क्या चुका है कि हम, हमारी जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हैं हम, वो इंग्लिश में ही होती हैं वहाँ।
1: यस यस।
2: बस डायलॉग जो है वो हिंदी में बोले जाते हैं।
1: हाँ।
2: बाकी सोच टोटल जो है इंग्लिश में चेंज हो चुकी है। तो अब क्या हुआ, सिनेमा भी अब हम हॉलीवुड बना रहे हैं, हमने बॉलीवुड नहीं बनाना बंद कर दिया। और अब जब लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या है।
1: Yes, yes.
2: क्योंकि आपने अपनी रूट्स को छोड़ दिया, आपने अपनी जो है पतन कर दिया हर चीज का। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड, अपने इंडियन कल्चर को लेके आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तभी लोग जुड़ेंगे उस फिल्म के साथ, तभी उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि रूट्स को पकड़े रहना बड़ा जरूरी है, और सफलता तो फिर आपके कदम जरूर चूमेगी।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
5: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: ऋषि जी, बहुत सारी बातें आज हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सिनेमा और वेब सीरीज में सफलता का जो स्केल है, मेजरिंग स्केल, अक्सर पैसों या व्यूज से नापा जाने लगा है। तो आपके हिसाब से एक कलाकार के तौर पर सच्ची सफलता क्या कहती है?
2: मैंने आपसे कमर्शियल फिल्म की बात करी थी, मैंने बोला कि मेरे को तो पूरी मनोरंजन वाली फिल्म, पूरी कमर्शियल फिल्म, आदमी आए बिंदास देखे, मजे करें और चले जाएं।
1: हाँ।
2: तो वो सफलता जो है वो पैसों से ही आएगी।
1: यस।
2: क्योंकि प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाते हैं, और कल उन्हीं को ही अगर सपोज करो बहुत अच्छी फिल्म बन गई मगर किसी ने देखी नहीं,
1: यस यस,
2: तो ऐसी जंगल में मोर नाचा है उसका कोई मतलब नहीं।
1: हाँ।
2: है। तो एंड ऑफ द डे हर चीज जो है पैसे से रिलेटेड है। अगर हमारे प्रोड्यूसर खुश है तो हम खुश है। प्रोड्यूसर ने अगर एक रुपए लगाया तो उसे दो रुपए मिल गए तो हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगली बार वो दो रुपए की फिल्म बनाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो कहीं ना कहीं आपको कमर्शियल एस्पेक्ट फिल्म की क्रिएटिविटी से जोड़ना ही पड़ेगा। आप अगर कुछ ऐसी फिल्म सोच रहे हैं आपको जो लगता है कि ऑडियंस नहीं मिलेगी सिनेमा हॉल के लिए, उसे आप यूट्यूब के लिए बनाइए, आप उसे OTT किसी प्लेटफॉर्म के लिए बनाइए। क्योंकि एक क्रिएटिविटी की अगर खुजली है तो वो मिटाने के लिए फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स है।
1: yes.
2: उसको आप सिनेमा हॉल के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां से पैसा निकलने वाला नहीं है।
1: हाँ।
2: तो कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा रहेगा, और मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर इतना पैसा इसलिए लगा रहा है कि उसको प्रॉफिट हो।
1: प्रॉफिट हो, यस।
2: वो ऑब्वियसली वो क्रिएटिव है, इस वजह से ही वो इस फील्ड में भी आ रहा है। मगर पैसा नहीं बनेगा तो वो नेक्स्ट टाइम फिल्म नहीं बनाएगा। नेक्स्ट टाइम फिल्म नहीं बनाएगा तो हमें काम नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल।
2: तो आपको जो हम उसको हम अगर हम मैच करना चाह रहे हैं कि क्रिएटिविटी और पैसे को, क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं पैसा जुड़ा हुआ है उससे।
1: बहुत सही बात है आपने कही कि पैसे के बिना तो वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा।
2: हाँ।
1: वही बात हो जाती है, क्योंकि सर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जब चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही होती, आपके फेवर में नहीं होती है, तो उस टाइम पर, उस फेज में अपने आप पर भरोसा रखना, अपने आप सेल्फ पेशेंस रखना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो ताकत है वो आपको कहाँ से मिलती रही है, या जो हमारे आज की जनरेशन है जो इस दौर से जूझ रहे हैं वो कैसे इन सब चीजों से डील करें?
2: अगर इशू है तो उसका सॉल्यूशन हो गई होगा।
1: बिल्कुल।
2: तो आप अपने क्राफ्ट पे वर्क करना शुरू करिए। हो सकता है आप एक पर्टिकुलर एक इमोशन पे वर्क कर रहे हो और वो अब इमोशन नहीं चल रहा है।
1: यस यस।
2: हो सकता है कि आपका एंगर बहुत अच्छा हो मगर आप रोमांटिक फिल्म्स की तरफ जा रहे हैं मगर वो नहीं आ पा रहा है।
1: yes, yes.
2: तो आप अपने क्राफ्ट के ऊपर तो काम करते रहिए, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप और एरियाज हैं उसको एक्सप्लोर करिए, और आपको अब तो ऑनलाइन आपको 36 स्क्रिप्ट मिल जाएंगी, आप उनको रिकॉर्ड करिए, अपने सबको दिखाओ, उनसे पूछो कि आप बताओ, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ये वाला इमोशन स्ट्रांग है। तो जल्दबाजी से तो कुछ होगा नहीं, आपको अपना टाइम पूरा देना पड़ेगा, और धीरे धीरे लोग भी समझेंगे कि यार ये इतना पैशनेटली लगा हुआ है, ये हर तरह के सीन करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं किसी को याद रह जाएगा कुछ। इवन थिएटर सबसे अच्छा जरिया है, और अब तो काफी सारे रामनगर में, मुंबई में काफी सारे जो है थिएटर छोटे छोटे बन गए हैं। तो आप अगर कुछ प्ले तैयार करते हैं तो आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को वहां बुलाइए, उनको अपना प्ले दिखाओ।
1: Yes.
2: प्ले हमेशा याद रह जाता है, तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम कास्टिंग कर रहे होंगे तो आपको बुला लेंगे,
1: बुला
2: कि यार मैंने उसका प्ले देखा था, वो कमाल था। तो इस तरह से भी आप होमवर्क कर सकते हो। और जो नए लोग जा रहे हैं उनके लिए ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपना खुद का रास्ता ढूंढे, किसी की मिमिक्री ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी
1: है,
2: तो वो आपको क्यों देखें।
1: Yes, yes.
2: तो आप अपना यूनिक टैलेंट उसमें से खोजिए और अपने ऊपर होमवर्क करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि अभी आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर आप असिस्ट भी कर सकते हैं।
1: yes.
2: आप कोशिश करिए आप सेट पे रहें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: आप किसी को, मैं कह रहा हूँ, प्रोडक्शन में लग जाओ, डायरेक्शन में लग जाओ, जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि दिन लंबा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और आपके पास अगर ऑडिशंस बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो वो रास्ता खोजो जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑडिशंस का टाइम हो। अगर आप पैसा नहीं इतना बना पा रहे हैं तो फिर वहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड ही जरिए ढूंढें।
1: बिल्कुल।
2: तो आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा कि हाँ, हो सकता है उस प्रोडक्शन में आपको कभी कह दे यार अच्छा वो नहीं आया, तू एक्ट कर,
1: तू
2: दिखा, या तू आप खुद बोल सकते हो कि यार इस रोल में तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ।
1: हाँ।
2: तो आप अपने आप को प्रूव कर दो।
1: बिल्कुल।
2: तो रास्ते बहुत है करने के, जिसे नहीं करना वो नहीं करेगा, जिसे हाँ, करना है वो कुछ करेगा।
1: सही कहा बिल्कुल आपने सर।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: अमा मिया पान खा के तो मजा ही आ गया। अब एक काम करो, एक बढ़िया सी सिगरेट दे दो जिसे पी के कलेजे में ठंडक पड़ जाए।
1: अरे क्या बात है मियाँ, लगता है 20-25 लाख वाला बीमा करवा लिया है या लॉटरी लग गई है।
0: नहीं भैया, बीमा तो नहीं कराया है, पर काहे?
1: आप जिस तरह से तंबाकू और सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं उससे जल्द ही आपके घर में भयानक मेहमान आने वाले हैं।
0: भयानक मेहमान कैसे होते हैं भैया?
1: अरे जैसे कैंसर, कुमार, दमा रानी और टीबी।
2: जी हाँ, पान मसाला खाना व धूम्रपान करना जानलेवा है। इससे आपको कैंसर, अस्थमा, चर्म रोग, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग और टीबी हो सकता है। तो आज ही एक कदम बढ़ाएं अपनी सेहत की तरफ। आओ ये संकल्प करें, धूम्रपान को बंद करें।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: निशा।
1: भाई साहब, निशा ढूंढे या ना ढूंढे, मैं जरूर इंतजार करती हूँ आप सभी के मैसेजेस का। मेरे साथ जुड़ गए हैं कुमार हेड़ा गांव से, सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और डिकेस्ट्रो फ्रेंड्स एंड फैमिली जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और मिलिस डिकेस्ट्रो, आप सभी के नाम ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना आप इंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: इंडस्ट्री में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, फिर चाहे आपका रोल मैटर नहीं करता कि आपको एज एन एक्टर काम करना पड़ रहा है या आप सेट पर पीछे असिस्ट भी कर सकते हैं किसी को, तो कंसिस्टेंसी कैसे भी हो बट मेंटेन करके रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या पुराने लोगों की भी बात करूं, कॉम्प्रोमाइजेस की बात आ जाती है ना, समझौतों की बात आ जाती है। तो शॉर्टकट के इस दौर में आप किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं या जो भी आपके सिद्धांत हैं उन पर कैसे आप टिके रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग है आज के टाइम में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मोस्टली कॉम्प्रोमाइज जब भी आएगा आप देखना वहाँ क्राफ्ट मिसिंग होगा।
1: यस,
2: आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा। आप देखना जिसको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात आती नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कॉम्प्रोमाइज चाह रहा हूँ, मगर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया मेरी फिल्म के लिए तो मैं अटक जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे यही एक्टर चाहिए।
1: yes.
2: तो पहले तो आप अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे जो है एक मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है ये कोई नहीं भूलने वाला है। तो आप पहले तो अपने क्राफ्ट पे होमवर्क कर लो। अगर आपका क्राफ्ट ही अगर वीक है तो फिर तो कॉम्प्रोमाइजेस वाली बात लेफ्ट राइट सेंटर से आनी आनी है।
1: बिल्कुल।
2: तो आप शॉर्टकट मत ढूंढो, इसमें टाइम लगेगा, आप टाइम दो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS करने के लिए आपको 5 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप जो है जर्नल फिजिशियन बनते हैं, उसके बाद एक्सपर्टीज है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो जब आप वहाँ 5-7-8 साल देते हो तो आपको एक्टिंग फील्ड में भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आज लैंड कर गए तो आपको आज ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ भी करना है, मार्केटिंग करनी है तो आप MBA मार्केटिंग करते हो तो पता चलता है आपने 5 साल दे दिए वहाँ भी।
1: बिल्कुल।
2: जब हर जगह आप देने को तैयार हो टाइम तो यहाँ क्यों नहीं देने को, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई फुल एंड फाइनल कोई पेपर्स पे कुछ नहीं होता है।
1: यस यस।
2: क्योंकि ये इनविजिबल क्राफ्ट है, उसकी पॉलिशिंग तो हो सकती है, आप कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके आप पॉलिशिंग कर सकते हो, मगर आप चाहो कि उसको मैं राइटिंग में ले आऊं, राइटिंग में एक्टिंग होती नहीं है। एक्ट का मतलब ही है टू डू।
1: यस।
2: मतलब करने की विद्या है।
1: yes,
2: मतलब पढ़ने की विद्या ऑब्वियस है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ते हो, आप देखते हो, आप सुनते हो, तो एक आप इमेज बना लेते हो कि हाँ ये इस तरह का कैरेक्टर इस तरह से वर्क करेगा। मगर आपको करना तो पड़ेगा ही, एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आपको ही आना है।
1: आपको ही आना है।
2: मैं कह रहा हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज करके आ भी गया मगर कैमरे के सामने क्या करोगे? कैमरे के सामने तो आप ही को एक्ट करना है,
1: आप ही को एक्ट करना है।
2: मेरा तो बिलीफ सिस्टम इसमें वर्क करता नहीं है। okay. मेरे को लगता है कि आप अपने चीजों को लेके होमवर्क करते रहो, नहीं तो फिर हर फिल्म में ही कॉम्प्रोमाइज होगा।
1: yes.
2: और आप कभी कहीं जा भी नहीं पाओगे,
1: जा भी नहीं पाओगे।
2: ऐसा भी नहीं होगा कि कोई रास्ता मिल गया।
1: हाँ।
2: फिर एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, चार फिल्म, फिर लोग फिर नमस्ते कर देंगे। फिर आप घर जाओ।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। Stay tuned.

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर, संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ।
4: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: इंडस्ट्री में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, फिर चाहे आपका रोल मैटर नहीं करता कि आपको एज एन एक्टर काम करना पड़ रहा है या आप सेट पर पीछे असिस्ट भी कर सकते हैं किसी को, तो कंसिस्टेंसी कैसे भी हो बट मेंटेन करके रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या पुराने लोगों की भी बात करूं, कॉम्प्रोमाइजेस की बात आ जाती है ना, समझौतों की बात आ जाती है। तो शॉर्टकट के इस दौर में आप किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं या जो भी आपके सिद्धांत हैं उन पर कैसे आप टिके रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग है आज के टाइम में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मोस्टली कॉम्प्रोमाइज जब भी आएगा आप देखना वहाँ क्राफ्ट मिसिंग होगा।
1: यस,
2: आपको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा। आप देखना जिसको अपने क्राफ्ट के ऊपर भरोसा होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात आती नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अब फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कॉम्प्रोमाइज चाह रहा हूँ, मगर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया मेरी फिल्म के लिए तो मैं अटक जाऊंगा, मैं कहूंगा मुझे यही एक्टर चाहिए।
1: yes.
2: तो पहले तो आप अपने क्राफ्ट के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे जो है एक मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है ये कोई नहीं भूलने वाला है। तो आप पहले तो अपने क्राफ्ट पे होमवर्क कर लो। अगर आपका क्राफ्ट ही अगर वीक है तो फिर तो कॉम्प्रोमाइजेस वाली बात लेफ्ट राइट सेंटर से आनी आनी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: तो आप शॉर्टकट मत ढूंढो, इसमें टाइम लगेगा, आप टाइम दो। जैसे डॉक्टर बनने के लिए MBBS करने के लिए आपको 5 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप जो है जर्नल फिजिशियन बनते हो, उसके बाद एक्सपर्टीज है, उसके बाद बहुत कुछ है। तो जब आप वहाँ 5-7-8 साल देते हो तो आपको एक्टिंग फील्ड में भी आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आज लैंड कर गए तो आपको आज ही सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ भी करना है, मार्केटिंग करनी है तो आप MBA मार्केटिंग करते हो तो पता चलता है आपने 5 साल दे दिए वहाँ भी।
1: बिल्कुल।
2: जब हर जगह आप देने को तैयार हो टाइम तो यहाँ क्यों नहीं देने को, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई फुल एंड फाइनल कोई पेपर्स पे कुछ नहीं होता है।
1: यस यस।
2: क्योंकि ये इनविजिबल क्राफ्ट है, उसकी पॉलिशिंग तो हो सकती है, आप कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके आप पॉलिशिंग कर सकते हो, मगर आप चाहो कि उसको मैं राइटिंग में ले आऊं, राइटिंग में एक्टिंग होती नहीं है। एक्ट का मतलब ही है टू डू।
1: यस,
2: मतलब करने की विद्या है।
1: yes.
2: मतलब पढ़ने की विद्या ऑब्वियस है कि आप बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ते हो, आप देखते हो, आप सुनते हो, तो एक आप इमेज बना लेते हो कि हाँ ये इस तरह का कैरेक्टर इस तरह से वर्क करेगा। मगर आपको करना तो पड़ेगा ही, एंड ऑफ द डे कैमरे के सामने आपको ही आना है।
1: आपको ही आना है।
2: मैं कह रहा हूँ कोई कॉम्प्रोमाइज करके आ भी गया मगर कैमरे के सामने क्या करोगे? कैमरे के सामने तो आप ही को एक्ट करना है,
1: आप ही को एक्ट करना है।
2: मेरा तो बिलीफ सिस्टम इसमें वर्क करता नहीं है। मेरे को लगता है कि आप अपने चीजों को लेके होमवर्क करते रहो, नहीं तो फिर हर फिल्म में ही कॉम्प्रोमाइज होगा।
1: यस।
2: और आप कभी कहीं जा भी नहीं पाओगे,
1: जा भी नहीं पाओगे।
2: ऐसा भी नहीं होगा कि कोई रास्ता मिल गया।
1: हाँ।
2: फिर एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, चार फिल्म, फिर लोग फिर नमस्ते कर देंगे, फिर आप घर जाओ।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। Stay tuned.

0: जंगल है आधी रात है।
1: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: 91.0 FM।
1: हेलो वंशी, आपका प्रोग्राम सच में बहुत अच्छा है। मैं कभी रेडियो नहीं सुनती थी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे सुनने के लिए इंस्पायर किया है, तब से मैं सुनने लगी हूँ। और सच में बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम, स्पेशली आपका, मतलब आरजे वंशी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आजाद हिंद रेडियो, कीप ग्रोइंग।
2: आँखों में

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि सर आपका जो फेवरेट जेनरे है टू एक्ट वो क्या है?
2: अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे को ना पहले तो स्क्रिप्ट ठीक ऐसा होनी चाहिए, मतलब मेरे को किक मारनी चाहिए यार।
1: हाँ,
2: कि अमेजिंग है। हार्ड वर्क से मैं डरता नहीं,
1: बिल्कुल।
2: मुझे लगता है कि हार्ड वर्क तो मैं लिखवा के लाया हूँ कि मुझे कोई भी चीज इजीली मिलेगी नहीं, ये कहीं ना कहीं रिटर्न में मैंने अपने माइंड में लिख लिया है कि यार कोई भी चीज मुझे इजीली मिलने वाली नहीं है, तो मैं हार्ड वर्क के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। आपने अगर मेरी एन नंबर ऑफ फिल्म्स देखी होगी तो उसमें काफी सारे वेरिएशन हैं अलग अलग, किसी में कुछ है। इवन मेरी जो फर्स्ट फिल्म थी वो बड़ी अनयूजुअल फिल्म थी।
1: अच्छा।
2: बोलो राम जो थी उसमें एक लड़की के ऊपर उसकी माँ के कत्ल का इल्जाम है। नॉर्मली कोई भी ऐसे अपना डेब्यू करता नहीं है, हर आदमी जो डेब्यू करता है या तो रोमांटिक फिल्म से करेगा। आज भी ऐसे हो रहा है। तो हर आदमी सेफ खेलता है। मैंने बहुत ही अनसेफ चीज से अपना डेब्यू करा। तो मेरे को मजा आता है एक्सपेरिमेंटल चीजें करने में, मगर उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा मैं देखता हूँ उसको हमेशा से।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा ये कि जब तक आप नंबर ऑफ यू नो वैरायटीज फेस नहीं करेंगे तो शायद आप अपने आप को उतने अच्छे से पॉलिश अप भी नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर बेस्ट है या कहाँ पर आपको काम करने की जरूरत है सर। क्योंकि एक जब आम इंसान की बात करें, जब वो असफल हो जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो अकेले में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रो सकता है या कुछ भी कर सकता है। बट बीइंग अ पब्लिक फिगर एज यू आर, आपकी असफलताओं पर सभी की नजरें रहती होंगी, तो आप ऐसी कंडीशन में अपने आप को किस तरीके से टैकल करते हैं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करके चलते हैं या आपका जो आत्मसम्मान है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं?
2: जर्नी, मेरे को लगता है कि जो मेरे को डेस्टिनेशन मेरी चेंज हो गई
1: जी।
2: मैंने मेरे को कुछ चीज अचीव करनी थी, वो मैंने अचीव कर लिया, तो मेरे को लगा कि अब आगे की एक और जो है डेस्टिनेशन हो गई। मगर मुझे लगता है कि जर्नी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, जो रास्ता है ना वो सुंदर होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: तो बाकी तो चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, सक्सेस मिलेगी कभी फेलियर भी मिलेगा। मगर आप अपना जीना नहीं छोड़ सकते हो।
1: बिल्कुल।
2: तो और अपने ऊपर होमवर्क करते रहो। मैं जैसे कई लोग मुझे कहते हैं यार तू बॉडी बिल्डिंग में है।
1: हाँ।
2: तो मैं बोलता हूँ मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। तो मेरे को अगर मेंटल बैलेंस की बात करूँ, मेरे को जिम बहुत ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी देता है।
1: ओके।
2: हाँ, और पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं सुनता बहुत सारी रिलीजियस चीजों को मैं सुनता हूँ, और मेरी फैमिली में है भी, मतलब पाठ पूजा बहुत ज्यादा है। तो उससे हमेशा एक कहीं ना कहीं लगता है कि एक फोर्स है जो प्रोटेक्ट कर रही है।
1: yes.
2: और भी बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे सिक्स सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, फ्यूचरिस्टिक है, बहुत सारी चीजें जो मुझे नजर आती हैं। तो तो मेरे को बिलीफ सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है कि हनुमान जी जो है पीछे खड़े हुए हैं।
1: जो होना भी चाहिए। बिलीफ सपोर्ट रहता है तो आप
2: लाइफ इजी है।
1: यस, लाइफ इजी है, इन शॉर्ट यही कहेंगे।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: सर, जो आजकल के टाइम को देखें, सिनेरियो को देखें, तो आपने देखा होगा कि आपके आजू बाजू के जो लोग होंगे वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, है ना? अपने बारे में सोचना, अपने बारे में ही करते कुछ रहना, मतलब आपके लिए इंसानियत की बात करें या बात करें दूसरों की हेल्प के लिए, इसके क्या मायने हैं? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है पुराना जो आपकी सोच को बदल दिया जिसने?
2: मुझे लगता है ये ना कोर प्रॉब्लम में आ गया अब।
1: Yes.
2: क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, सिंगल चाइल्ड होता जा रहा है।
1: Yes.
2: तो वहां पर क्या, पहले क्या होता था, पहले सब फैमिलीज इकट्ठी रहती थी, इतने सारे बच्चे होते थे, सब आपस में बातें बात करते थे। अब क्या सिंगल है तो उसे लगता है कि सब मेरा ही है।
1: Yes.
2: तो इसलिए वो सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। अब ना तो आगे कोई है ना पीछे कोई है।
1: हाँ.
2: मतलब फैमिली जो है एक ही बच्चे को देख रहे हैं।
1: Yes.
2: अब ज्वाइंट फैमिलीज का कल्चर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो अब क्या है, वो प्यार खत्म हो जा रहा है, वो आपस में सामान को बांटना, केयरिंग शेयरिंग, वो सब टोटल अब उस तरफ जा रहा है कि यहाँ एक तो आप मेट्रो पहुंच गए तो वैसी पड़ोसी से नहीं है आपकी। ऊपर
1: हाँ।
2: से अगर एक बच्चा है उसे लगता है कि मैं ही मैं हूँ।
1: Yes.
2: तो वो एडजस्टमेंट जो है सोसाइटी में, एक टाइम के बाद आप जैसी ट्वेल्थ करते हैं या अपने कॉलेज करते हैं तो फिर आप अपने आप को देखते हैं यार मैं अकेला रह गया। तो फिर क्या होता है, वो अपने आप में ही एक घुटन कह लो उसको।
1: Yes.
2: या अपने सेल्फ सेंटर्ड, उसको वर्ड देना सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा हो सकता है कि वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाए।
1: Yes, yes.
2: मगर वो मेरे को लगता है वो घुटन ज्यादा है क्योंकि अब किसी से आप शेयर कर नहीं सकते
1: हैं, सकते।
2: आप किसी पे बिलीव रखते नहीं है।
1: Yes.
2: आसपास के लोग जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जो शेयरिंग केयरिंग में जो मजा है, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली से हैं।
1: Yes.
2: तो जो मजा साथ रहने में है वो अलग अलग रह के कुछ होता नहीं है, मतलब होगा लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता।
1: बहुत सही आपने कहा कि क्योंकि संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे जो है रेयर होते जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही जरूरी है बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसकी मॉरल वैल्यूज को अपडेट करने में और इनकल्केशन में। तो मुझे भी यही लगता है कि जो ज्वाइंट फैमिली होती है उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, और वो आपको समाज में किस तरीके से रहना है, जो सामाजिक वैल्यूज होते हैं असल में, वो हमें वहीं से सीखने को मिलते हैं, जो आजकल के बच्चों में शायद धीरे धीरे थोड़े कम होते चले जा रहे हैं।
0: बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
2: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
4: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
5: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
4: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
6: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
7: हेलो, मारो नाम मेयर जसमत भाई बच्चू भाई, गांव नाना पाड़ियात, तालुको जिलो बोटाद, गुजरात। हम तो अमे खूब लांबा समय थी आजाद हिंद रेडियो सांभळवे छी अने सांभळवानी खूब मजा आवे छे, अने आज वंशीबेन नी वातो खूब आनंद आपी दे तेवी होय छे, अने खास तो अमने ए वात नो आनंद थाय छे कि आज वंशीबेन नी भाषा हिंदी छे, छता थोड़ो घणो 100% नहीं पण छता थोड़ो घणो अमारी साथे गुजराती मां वात करी ले छे। एमे के हालो वंशीबेन केम छे, ते के सो जसमत भाई मजा मां छो, एटले ई वात नो अमने खुद खूब आनंद थाय छे कि अमारी साथे आज वंशीबेन गुजराती मां थोड़ो घणो बोली ले छे, અને હંમેશા આનંદમાં રહેવાની। થેન્ક યુ।

0: ये है स्पेशल टॉक शो विद बॉलीवुड एक्टर ऋषि भूटानी एंड आरजे वंशी।
1: ऋषि जी, अभी ना मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहूंगी, इफ यू परमिट। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि

0: आपको ना इन शब्दों का एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना होगा एंड यू हैव टू चूज वन. ओके, तो फर्स्ट वन इज पैसा या सुकून.
1: सुकून.
0: ओके,
1: वो पैसे से सुकून आता है.
0: शोहरत या सम्मान.
1: आप मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं.
0: इसी को तो बोलते हैं रैपिड फायर.
1: सम्मान तब मिलता है जब शोहरत होती है.
0: यस. तो बड़ा बनना या अच्छा बनना.
1: अच्छा बनना.
0: कैसे.
1: किसी को दुखी मत करो, किसी को परेशान मत करो, अपने अपने लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा करो. आप अगर मैं बात करूं, एक वर्ड है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल.
0: यस.
1: तो अगर हम सोशल नहीं है तो हम एनिमल है.
0: एनिमल है. यस.
1: तो आप जानवर बन जाओ यार.
0: बहुत सही कहा आपने. अभी मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको मतलब बताना होगा व्हाट इट मींस टू यू. सफलता.
1: सब कुछ.
0: सब कुछ. ओके.
1: आपको पता होगा कि हर चीज एक टाइम के दौरान होती है. 10 साल पहले कुछ और.
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारे एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा।

Yadgar. The Marcel Resorts, a royal experience near Subharti, Haridwar Bypass Road, Meerut. सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परमादरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत। यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

0: तो हमारे सूर्य कवि कौन के पंडित लक्ष्मीचंद एक बार सांग कर रहे थे, उनके तले कौन के अपने पंडित मांगेराम नाचा करते और गाया भी करते। तो एक दिन कुछ पंडित जी ने मांगेराम तक कह दी, तो हमारे पंडित मांगेराम बड़े गुस्से में हो गए। तो पंडित जी ने वही सांग छोड़ के अरे एक नाचन के ऊपर रागनी बनाई, कौन सी बता
1: हे रजीवर जन तू पशु पखेरू।

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव

0: ट्रैफिक अपडेट। ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आप हो कहीं भी अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया अनुवाद।

0: कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है।

सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

तो भाई बात कहां से कि राजा कमंडन अर्जुन को अपनी बेटी की शादी करने के लिए कहता है उत्तराखंड। तो अर्जुन कहने लगा कि महाराज उसको तो मैंने शिक्षा दे रखी है, वो तो मेरी बेटी समान है। तो राजा कमंडन कहने लगा कि तो भाई, कहने लगा महाराज मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अभिमन्यु, उसके साथ शादी कर दो। इतने में द्रौपदी आ जाती है और द्रौपदी अर्जुन से क्या कहती है,

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाए लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: केसु

0: ट्रैफिक अपडेट। ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आप हो कहीं भी अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
0: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो।
2: ए सेठानी नीर बनन चलेगी
1: आज ना जाऊंगा ना गई तो पूरी बन ठंड कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजाड़ में बिजली पड़े है तू के नहरिए जागी नुए चली जा।

टूटी। नमस्कार, जय हिंद, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रायोजक है, प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिनके साथ मिलकर हम लंबे समय से आपको जागरूक कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने आपको कई बीमारियों के प्रति जागरूक किया है। पिछले कई कार्यक्रम में हमने आपको टीबी नामक रोग के बारे में भी बताया है। टीबी एक जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन अब इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों, पिछले कई कार्यक्रम में हमने टीबी के बारे में विस्तार से बात की है। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवाई की जो प्रतिरोधी यानी कि एमडीआर टीबी का भी इलाज अब पूरी तरह से उपलब्ध है। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर बाहर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इलाज को बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए। दवाओं के संभावित रिएक्शन की अगर दवा से कोई परेशानी हो रही है तो निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद के लिए तुरंत तैयार रहती हैं।

बलगम आने में भी कमी हो जाती है, बुखार आना भी बंद हो जाता है। ऐसे में मरीज को लगता है कि अब वो ठीक हो गया है, तो एक से दो महीने के अंतराल पर ही कई बार मरीज दवाइयां बंद कर देते हैं बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी के सलाह या मशवरा के खुद से ही दवाई बंद करके बैठ जाते हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी एक ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, बिना एक्सपर्ट की सलाह के तो दवा बंद ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात टीबी की जांच की और टीबी की दवाइयों की, तो पूरा कोर्स ही करना चाहिए जो तकरीबन 9 महीने तक लगातार चलता है। जो टीबी से संबंधित अधिकारी, डॉक्टर या निक्षय से संबंधित डॉक्टर्स या टीम होती है, उनके संपर्क में आपको लगातार बने रहना चाहिए। उनके जानकारी के बिना कभी भी दवा रोकना नहीं चाहिए।

सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर ये खास प्रस्तुति, जिसके हमारे प्रस्तुतकर्ता हैं स्मार्ट एनजीओ। टीबी की जानकारी के बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, टीबी एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, दवा लंबे समय तक यानी कि पूरा कोर्स करना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, जैसे ही महीने दो महीने में उनको आराम लगना शुरू हो जाता है। तो पिछले कई कार्यक्रमों के बाद, जैसा कि हम यहां पर चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है, संदेश भी आता है। अधिकांश लोगों से एक ही बात हुई और हमें पता चला कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक, महीनों तक दवा खाना, लगातार खाते रहना आसान नहीं होता। और दोस्तों, सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा इलाज करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको टीबी का इलाज शुरू करा देना चाहिए। जिन लोगों ने टीबी का इलाज शुरू करवा दिया और किसी भी वजह से उसको बीच में रोक दिया, तो अपनी जान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एक तो आपको टीबी हो गई है, और टीबी का इलाज अगर आपने शुरू करा दिया दवा बीच में रोकने के बाद, टीबी और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, बाद में मरीजों को ज्यादा समस्या हो सकती है। तो सभी श्रोताओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अगर आपने कोई मरीज ऐसा देखा जिसको टीबी हुई और उसने दवाई बीच में रोक दी, चाहे किसी भी परेशानी से, मान लीजिए उसको दवा लेने में समस्या हो रही है, कोई रिएक्शन उसको नजर आ रहा है, या उसको आराम लग गया है, या वो काम पर किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर में लौट गया है और वापस दवा लेने अपने गांव में या कस्बे में नहीं आ सकता, ऐसे मामलों में भी लोग दवाइयां बंद कर देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो सचेत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो अब से कुछ साल पहले हुई। पास के ही एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था, रवि। उसको लगता था कि उसको फीवर रहता है, बुखार रहता है, वजन कम हो रहा था, खांसी लंबे टाइम से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला कि उसको टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख वापस लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन डेढ़

0: महीने के बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हो गई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते या दाने जैसे दिखने लगे। उसे मतली शुरू होने लगी, कभी कभी उल्टी भी शुरू होती। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी कि दवा बंद कर दो, दवा से रिएक्शन हो गया है, दवा नुकसान दे रही है। लेकिन संयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारा ये कार्यक्रम सुना, सेहत सही लाभ कही, और एक पुराना एपिसोड था जिसमें हम बता रहे थे कि दवाइयां नहीं रोकनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया, समझाया गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी डॉक्टर को जाकर बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में सब लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई बीमारी हुई, बुखार हुआ, सरदर्द हुआ या कुछ भी समस्या हुई, खुद से ही जाकर मेडिकल स्टोर से कोई दवा मांग लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर यह चलन बहुत बड़ा है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए, कुछ अतिरिक्त उपचार भी दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रित हो गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता ने डर कर दवा बंद कर दी होती तो बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा में नहीं है बल्कि समय पर सलाह न लेने से पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी टीबी की दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी। अगर कोई समस्या नजर आ रही है तो जाकर उन डॉक्टरों से, सरकारी टीम के पास आपको पहुंचना चाहिए, निक्षय टीम जो होती है, और बताइए अपनी परेशानी। यकीन मानिए आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अब एक मरीज को क्या चाहिए? समय पर दवा, अच्छा खानपान, देखभाल, समझाने वाले कुछ लोग और बीमारी से छुटकारा। और ये सब करने में सरकार एक टीबी के मरीज की पूरी तरह से मदद कर रही है। खाते में पैसे भी आते हैं, निक्षय पोर्टली के माध्यम से खाने पीने का सामान भी आता है। सरकार आपको पैसा भी दे रही है, खाने का सामान भी मुहैया करवा रही है, पर जांच भी करवा रही है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि टीबी को पूरी तरह से हराना है दोस्तों।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है मेरठ का नंबर वन सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। टीबी के बारे में हम यहाँ पर बहुत देर से बात कर रहे हैं। टीबी का इलाज कितना ज्यादा जरूरी है, कितना आसान है, सुगम है। सरकार दवाई देती है, खाने पीने का सामान भी देती है, साथ ही साथ आपको उतने पैसे भी देती है कि आप कुछ प्रोटीन युक्त भोजन कर सकते हैं, है ना। निक्षय पोर्टली के माध्यम से आपको खाने पीने का सामान समय समय पर मुहैया भी कराया जाता है। मेरठ जिले में किस प्रकार से सरकार इस योजना को सुनियोजित तरीके से आपके लिए मुहैया करा रही है, आपकी मदद कर रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं टीबी रोग विभाग के साथ। आइए बात करते हैं।
1: सेहत सही

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: देती है? नहीं, बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपए महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: सर मैंने सुना कि 6 महीने तक या 9 महीने तक दो तरह से चलता, कैसे इलाज चलता है इसका?
1: वो पहले सिस्टम था जिसमें जो कोई नया रोगी आता था उसका इलाज 6 महीने चलता था। कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी जो है ना कुछ समय बाद उभर जाती है
0: जी।
1: तो उसको हम बोलते हैं कि रीट्रीटमेंट, यानी कि एक बार ट्रीटमेंट लेने वाला व्यक्ति अगर दोबारा ट्रीटमेंट पे आता है उसको रीट्रीटमेंट बोलते हैं
0: जी।
1: तब पहले नियम था कि उस रोगी को 9 महीने दवा खिलाई जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं है, दवाइयां बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब किसी ने व्यक्ति ने पहली बार दवा खाई या दूसरी बार दवा खाई, इलाज 6 महीने ही चलता है, अब 9 महीने का सिस्टम

0: बार किसी व्यक्ति का टीबी का इलाज सरकारी आप लोगों की देखरेख में इलाज हो गया तो क्या फिर भविष्य में उसको दोबारा टीबी हो सकती है या नहीं?
1: संभावना है, उसको कोई लापरवाही रखेगा, अगर अपने खान पीन में ध्यान नहीं रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेगा, तो चूंकि उस बीमारी ने उसका घर देख लिया, आप ऐसे समझिए, मैं देशी भाषा में समझाता हूँ, उसके फेफड़ों पे कुछ इम्पैक्ट डाला, उसके थोड़े बहुत फेफड़े भी इसमें से कमजोर हुए, तो 2-4% व्यक्तियों में ये संभावना है कि वो बीमारी उनको दोबारा से अपने चपेट में ले।
0: अब सर ये बताएं कि अगर किसी घर में कोई टीबी का मरीज ना चाहते हुए भी हो जाता है तो उनको परहेज किन किन चीजों के रखने, खाने पीने का भी बताएं, और जैसा कि आपने बताया कि बर्तन अलग करा देते हैं, कपड़े वगैरह अलग होते हैं, छोटे बच्चों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, बताएं।
1: देखिए, अगर किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति फेफड़ों के टीबी का रोगी पाया जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान उसको रखना है कि हमेशा मास्क लगा के, कपड़ा लगा के रखे, जब भी खांसे छींके थूके, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों से लिपटा चिपटी या प्यार करने की उन चीजों से बचे, वो खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, साथ रहने का कोई परहेज नहीं है, ध्यान रखे उसका कमरा हवादार हो, उसमें कोई रोशनदान हो, कोई एग्जॉस्ट फैन लगाओ, ताजी हवा का इस्तेमाल करे और जितना डिस्टेंस बना सके। वैसे तो जो औषधियां ये खाता है व्यक्ति, लगभग लगभग एक महीने के अंदर वो दवाएं उस रोग को जाके अंदर इतना निष्क्रिय कर देती हैं कि वो जो फैलने का डर था वो फैलने का डर काफी हद तक कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर भी ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप रख सके, खासतौर से छोटे बच्चों से, खांसते छींकते थूकते हमेशा अपना मुंह बंद रखें, अगर थूकना भी हो तो किसी जो राख के अंदर ऐसे कोई बर्तन बना के रखें और उसको किसी प्रॉपर जगह पर डिस्ट्रॉय करें, ये सावधानी बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। संभावना को देखते हुए कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सरकार ने ऐसा भी औषधियां उपलब्ध करानी शुरू करी है कि अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है तो उसके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे प्लस सभी बड़े एडल्ट जितने भी हैं सबको सरकार 6 महीने तक दवा खिलाती है अलग से।
0: अच्छा।
1: टीबी की प्रॉपर दवा नहीं होती, पूरा वो कोर्स नहीं होता, मगर वो बचाव का एक कोर्स होता है, बच्चे और बड़े सारा वो कोर्स करते हैं 6 महीने का।
0: अच्छा।
1: ताकि वो बैक्टीरिया उस बच्चों और बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
0: अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको बीमारी हो गई है टीबी की वो तो दवाएं खाएगा लेकिन पूरा परिवार भी थोड़ी कम डोज वाली दवाई तो खानी है उसको।
1: वो बचाव के लिए एक कोर्स है, वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर यहाँ बताने से कोई लाभ नहीं है, मगर वो सभी

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जय हिंद वंदे मातरम सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। आप सुन रहे हैं, मैं हूं वास्तु कृष्णा और यह है कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, यह है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की। ये नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से चुलबुले बच्चे, ये क्यूटी पाई आपके, जिन्हें आप कभी लड्डू कहते हैं, कभी गोपाल कहते हैं, तो कभी चीकू भी कहकर पुकारते होंगे, है ना। उस नन्ही सी जिंदगी की जो जन्म लेते ही हमारी पूरी दुनिया बदल देता है, उसी की बात करेंगे आज हम। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो परिवार में खुशियां आती हैं, लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी शुरू होती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बच्चा कितना बड़ा हो रहा है, सवाल यह है क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है, क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है, क्या उसे पर्याप्त पोषण मिल पा रहा है, क्या उसकी आंखें और कान ठीक हैं, क्या उसका शरीर मजबूत हो रहा है, क्या वो अपनी उम्र के हिसाब से सीख और समझ रहा है, और क्या उसकी मां भी स्वस्थ है। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ बच्चा बनाने की शुरुआत मां के स्वास्थ्य से होती है। तो आइए आज जन्म से लेकर लगभग 10 साल की उम्र तक के बच्चे के स्वास्थ्य की पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं सेहत सही लाभ कई में।
2: सेहत सही

कदम आपका एक बार फिर से सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति। दोस्तों, क्या बच्चा स्वस्थ बढ़ रहा है? क्या उसका दिमाग सही तरीके से विकसित हो पा रहा है? पोषण मिल रहा है? आंख, कान, पैर, हाथ सब ठीक है, मजबूत है? क्या अपनी उम्र के हिसाब से बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है? ये सब जिम्मेदारियां एक पूरे परिवार की होती है ठीक समय पर पता करना। साथ ही साथ ये भी कि उसकी माँ भी क्या स्वस्थ है भी या नहीं। बच्चे के जन्म के समय की बात करते हैं। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद के जो टाइम होते हैं, जो दिन होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नवजात बच्चे को जन्म के बाद गर्म रखना, माँ और बच्चे का जो त्वचा से त्वचा का संपर्क है वो बनाना, जल्दी स्तनपान शुरू कराना, संक्रमण से बचाव और बच्चे की सांस और सामान्य स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है। WHO नवजात की आवश्यक देखभाल में इन बातों को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए बच्चे के जन्म के बाद केवल घर ले आना ही पर्याप्त नहीं होता, माँ और बच्चे दोनों की प्रसव के बाद जांच और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात आती है माँ के दूध की। दोस्तों, बच्चे के जीवन के शुरुआती महीनों में माँ का दूध उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषण होता है। WHO और यूनिसेफ की सिफारिश है कि बच्चे को जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद सुरक्षित और पर्याप्त पूरक आहार शुरू किया जा सकता है और स्तनपान 2 साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है। इसीलिए नवजात को बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना आवश्यक जांच पड़ताल के पानी, शहद या दूसरी चीजें मत चटाइए। इस तरह की परंपराओं से बचना चाहिए। ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा घर पर पहली बार आता है तो मोहल्ले के कुछ लोग आकर ऐसी बातें बता देते हैं कि बच्चे को ये चटा दो, वो खिला दो। ऐसे चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, डॉक्टर की ही सलाह माननी चाहिए। और हाँ, अगर माँ को स्तनपान कराने में परेशानी हो रही है, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा बार बार उल्टी करता है, तो स्वास्थ्य कर्मी से या अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले। अब बात करेंगे हम माँ की। हम अक्सर बच्चे की चिंता में माँ को भूल बैठते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद माँ के शरीर को आराम भी चाहिए, पौष्टिक भोजन भी, पर्याप्त पानी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ को लगातार अत्यधिक कमजोरी हो, बहुत ज्यादा रक्त स्राव हो, तेज बुखार हो, सांस लेने में परेशानी हो, बहुत तेज सिर दर्द या दूसरी कोई गंभीर समस्या नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी, माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य का हिस्सा होता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद थकान और भावनात्मक बदलाव हो सकते हैं, लेकिन अगर माँ लंबे समय तक बहुत उदास रहे, किसी काम में मन न लगे, अत्यधिक चिंता रहे या खुद को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए, तो इसे छिपाना नहीं चाहिए। परिवार को उसका साथ देना चाहिए और स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। WHO भी प्रसव के बाद माँ और परिवार को जानकारी, सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता देने के महत्व पर जोर देता है। अब ये जिम्मेदारी परिवार की भी बनती है कि जन्म के बाद सिर्फ बच्चे के चक्कर में नहीं लगे रहना, उसकी माँ का भी विशेष ध्यान रखना। मानसिक बदलाव भी होंगे, है ना, स्ट्रेस भी हो सकता है, एक माँ को तनाव भी हो सकता है, कई बीमारियां भी घर कर सकती हैं, तो माँ का भी उतना ही ध्यान रखना जितना बच्चे का रखना है।

0: आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यह है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के जन्म से लेकर तकरीबन 9-10 साल की उम्र होने तक उसका ध्यान किस प्रकार रखें, और बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ सबसे जरूरी हो जाता है माँ के सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये तो आपको पता ही होता है। अब नवजात बच्चे में किन किन बातों पर नजर हमको रखनी है इसकी बात करते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा, बहुत ज्यादा सुस्त है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, बहुत तेज या असामान्य सांसें चल रही हैं, शरीर बहुत ठंडा या बहुत गर्म लग रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चे का रंग असामान्य रूप से पीला या नीला दिखाई दे रहा है, तो इंतजार मत कीजिए। नवजात बच्चे में बीमारी तेजी से गंभीर हो सकती है, ऐसे संकेतों में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर के पास जाकर संपर्क जरूर करना चाहिए। अब बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब क्या करना है? दोस्तों, अब शुरू होती है एक नई यात्रा। 6 महीने के बाद सिर्फ दूध बच्चे की बढ़ती जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं रहता। 6 महीने के बाद इसीलिए उम्र के अनुसार पूरक आहार शुरू करना चाहिए, जैसे कि स्तनपान तो जारी रखना ही है। बच्चे के खाने पीने में धीरे धीरे अलग अलग पौष्टिक चीजें शामिल कीजिए, दाल, खिचड़ी, सब्जियां, फल, हल्के फुल्के अनाज, अंडा, दूध या अन्य उपलब्ध जो भी आपके परिवार में चलता है पौष्टिक खाद्य पदार्थ। और परिवार की जो स्थानीय या पौष्टिक चीजें होती है, ऐसा होता ना कि हर किसी के परिवार में अलग खान पान चलता है या हर स्थान पर हर जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। ध्यान रखिए, परिवार में एक तरह का भोजन बनता है, लेकिन एक परिवार में नवजात बच्चा भी है, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सबका भोजन एक नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्गों की पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहती, उनका भोजन अलग होना चाहिए, नौजवानों का अलग होना चाहिए, किशोरों का अलग होना चाहिए और नवजात शिशुओं का, बच्चों का अलग भोजन होना ही चाहिए। यह नहीं है कि आज आपने अपने घर में कुछ बना दिया तो बच्चे को भी, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भी वही चटाते रहे, जी नहीं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि छोटे नवजात बच्चों को आपको क्या खिलाना है। उसके शरीर और दिमाग के विकास के लिए पोषण देना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार की स्थानीय जो भी चीजें हैं, पौष्टिक चीजें हैं जो आप खाते हैं अपने घरों में, वो खिलाएं, उसी में से ढूंढ लें कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे को सिर्फ पेट भरने के लिए खाना नहीं देना है, उसका पोषण का ध्यान रखना है। अब आती है एनीमिया यानी खून की कमी की बात। बच्चों में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। बच्चा जल्दी थक जाए, कमजोर दिखाई दे, खेलने में रुचि न दिखाए, उसकी त्वचा या आंखों के अंदर का हिस्सा ज्यादा पीला दिखाई दे या उसका विकास अपेक्षित गति से न हो रहा हो, तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, बिना जांच या डॉक्टर की सलाह के बच्चे को आयरन की दवा खुद से नहीं देनी है। जरूरत के अनुसार डॉक्टर जांच और उपचार तय करेंगे, उसके बाद ही कोई दवाई खिलाई जाएगी। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी है। दोस्तों, बच्चे का स्वस्थ विकास केवल वजन बढ़ने का नहीं होता है। बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब बोलना शुरू करता है, अपनी बात कैसे समझाता है, दूसरों से कैसे जुड़ता है, कैसे खेलता है, कैसे चीजों को समझता है, ये सब उसके विकास का हिस्सा है। हर बच्चे के विकास की गति थोड़ी अलग होती है, इसीलिए कंपेयर मत कीजिएगा कि फला बच्चा तो, उनका बच्चा तो बहुत जल्दी बोलना शुरू हो गया, बहुत जल्दी खड़ा होना शुरू हो गया, या वो ऐसे करता है वैसे करता है। हर बच्चा बिल्कुल अलग है, तो किसी से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लगातार पीछे ही खिसक रहा हो या पहले से आती कोई क्षमता खो रहा हो, तो उसे इस बात को नजरअंदाज नहीं करना है। समय पर जांच और शुरुआती सहायता बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। WHO के अनुसार शुरुआती वर्षों में बच्चे को अच्छा पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित वातावरण, प्यार, देखभाल और सीखने के अवसर मिलना उसके विकास की बुनियाद होते हैं। इसीलिए बच्चे को सिर्फ मोबाइल पकड़ा देना सीखना नहीं होता। दोस्तों, उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए, वो बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, वो सब सुनिए, उसकी बातों को सुनिए और फिर उसे कुछ कहानियां सुनाइए, उसे अपनी बातें बताइए, उसके साथ बातें कीजिए, उसके सवालों का जवाब दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ चित्र भी बनाइए, अगर वो कोई मस्ती करता है तो अपने बच्चों के साथ मस्ती भी कीजिए, गाने उसको सुनाइए, कविता सुनाइए, लोरी सुनाइए, और हाँ अगर वो कुछ आपको सुनाना चाहता है तो सुनिए भी, और उसे सुरक्षित वातावरण में चीजें खोजने और सीखने का मौका दीजिए। बच्चे का दिमाग सिर्फ किताबों से नहीं बातचीत और अनुभव से भी विकसित होता है। अब 2 से 5 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है, इस उम्र में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं। इस समय पोषण के साथ साथ नींद, शारीरिक गतिविधि, खेल, भाषा और सामाजिक व्यवहार पर भी ध्यान देना शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है तो आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, सारा दिन वो मोबाइल ही देखता रहे, ये जितने कार्टून और जो बच्चों की वीडियोस होती है वही देखता रहे, उसे दूर रखना है। बच्चे को खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, अगर जरूरत पड़े आप खुद उसके साथ खेलिए, उसके खेलने के सामान लेकर आइए, बहुत ज्यादा मोबाइल मत देखने दीजिए, बच्चे को हर समय मोबाइल या टीवी के सामने मत बैठने दीजिए, इसके बजाय उसे उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातचीत कीजिए, उसको कहानियां सुनाइए, परिवार के साथ खेलने का मौका दीजिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलने का मौका दीजिए, हाथ धोने की आदत डालिए, साफ पानी पिलाने की आदत डालिए, साफ और सुरक्षित खाना कैसे खाना है ये उसको बताइए, शौचालय कैसे यूज करना है, हाथों को कैसे धोना है ये सब उसको सिखाइए, और हाँ टीकाकरण का रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखिए, टीके की कोई खुराक छूट तो नहीं गई है, स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर आगे की पूरी योजना तय करिए।
2: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

0: प्रस्तुति।
1: जी हाँ, यह सेहत से ही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हमने बात की है यहाँ पर कि अपने नवजात बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तकरीबन पैदा होने से लेकर 9-10 साल की उम्र तक कैसे कैसे हमको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके भी कोई विचार है तो हमारा नंबर है 9639012111 पर, इस पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके कुछ भेज सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ये खास प्रस्तुति है स्मार्ट एनजीओ की।

ऐसे ही प्यार से, जैसे ये गाना भी आपने सुना, ऐसे ही प्यार से अपने बच्चों से बात कीजिए। दोस्तों हमने बात की पैदा होने से लेकर तकरीबन 5 साल तक हमारे बच्चों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अब बात करते हैं 5 साल से 10 साल तक के बच्चों का ध्यान कैसे हमको रखना है। दोस्तों ये वो उम्र है जब माता पिता को सिर्फ पढ़ाई के नंबर नहीं देखने चाहिए। बच्चा स्कूल में कैसा महसूस करता है, उसकी नजर साफ है या नहीं, उसे सुनने में कोई परेशानी तो नहीं, वो बार बार सिर दर्द की शिकायत तो नहीं करता, अपनी क्लास में ध्यान लगाने में लगातार कठिनाई तो नहीं हो रही, बच्चा बहुत जल्दी थक तो नहीं जा रहा, बार बार बीमार तो नहीं पड़ता, उसका वजन और लंबाई उसकी उम्र के अनुसार लगातार बढ़ रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी क्या बच्चा खुश है। अगर बच्चा लगातार चुप रहता है, डरता है, स्कूल जाने से बचता है, अचानक पढ़ाई में गिरावट आती है, व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई देता है, तो केवल डांटने के बजाय उससे बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उसके टीचर से या डॉक्टर से भी मदद लीजिए। और सबसे खास बात दोस्तों हमारी बेटियों के बारे में, बेटा हो या बेटी वैसे बात बराबर होती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटियां थोड़ी नाजुक होती है, मतलब वो थोड़ी कोमल स्वभाव की होती है, वो जल्दी डर जाती है, उन्हें कम डांटिए। बेटियां बड़ी कोमल होती है तो उनको समझाइए, प्यार से बात कीजिए और उससे बात करेंगे जितना ज्यादा उसके स्कूल में क्या हुआ, उसके दोस्त या सहेलियां कौन है, क्या उसकी पढ़ाई में चल रहा है। खासतौर से हमारी बच्चियां अपने मोबाइल में क्या देख रही है ये पिता को पता होना चाहिए, पता तो लड़कों का भी होना चाहिए, दोनों का ही बराबर मात्रा में ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा अगर एफर्ट आपको करने पड़े तो कीजिए, बच्चों से पीछा छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए कि बच्चे को स्कूल भेज दिया आप छुट्टी, ऐसा नहीं। बच्चा जब गाड़ी से उतरे ना, स्कूल से वापस आए, तुरंत उसके गले मिलिए, उसको ये एहसास कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे, घर पर उसका इंतजार होता है, उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराइए, उसके स्कूल में क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सब उसके साथ बातें कीजिए, उसके दोस्तों ने क्या कहा, टीचर्स ने क्या कहा, बच्चे को वो अपनापन दीजिए कि उसको लगे कि हाँ उसके माँ बाप ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए अगर आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो अपने बच्चों के दोस्त बन जाइए। आज से ही एक अच्छे नौजवान बच्चे के किशोर अवस्था में पहुंचने तक माँ बाप को अपने बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके अच्छे खान पान का ध्यान रखना चाहिए, उनकी मित्र मंडली कैसी है ये ध्यान रखना चाहिए, उनको क्या खेलकूद पसंद है वो ध्यान रखना चाहिए, उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में जा रहा है ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप माँ बाप हैं, आपको सब कुछ पहले से ही पता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज की इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपए महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है। क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे, टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरगना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत सही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते और अपना इलाज पूरा करें। इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूं कि जरूर इस जानकारी से हमारी

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। फिलहाल बात करना हम शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन अनुवादकों और भाषा पेशेवरों के योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है, जो भाषा की बाधाओं को खत्म करके विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते हैं। बातें चलती रहेंगी, आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

कमाई कितनी भी हो, बचत जरूरी है। छोटी छोटी बचत ही बुरे वक्त का सहारा बनती है, इसीलिए अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा आज ही बचाना शुरू करें। आज ही इन्वेस्ट करें, कल को सुरक्षित करें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर हमारी बातें चल रही हैं जो हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1953 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT ने अनुवादकों को एकजुट करने और उनके पेशे को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की शुरुआत की। साल 2017 की बात करें तो 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर 30 सितंबर को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया। अनुवादकों की भूमिका सिर्फ शब्दों का अनुवाद करने तक सीमित नहीं है, वो विचारों, सूचनाओं, साहित्य और सांस्कृतिक बारीकियों का आदान प्रदान करके वैश्विक शांति, विकास और सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

ट्रैफिक जैम का गुस्सा अब गानों में निकालो। रेड लाइट हो या लंबा रास्ता, हम हैं आपके बेस्ट ट्रैवल पार्टनर। आज ही डाउनलोड करें आजाद हिंद रेडियो ऐप और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को लेकर। हर साल ये दिवस एक विशेष थीम पर केंद्रित होता है। बात करें इस साल की थीम की, तो इस साल की जो थीम है वो रही ट्रांसलेशन शेपिंग अ फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट, मतलब अनुवाद एक ऐसे भविष्य का निर्माण जिस पर आप भरोसा कर सकें। यह है ये थीम आज के समय में अनुवाद की विश्वसनीयता और सटीकता पर जोर देती है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में। इसका उद्देश्य ये बताना है कि भले ही तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन सटीक और नैतिक अनुवाद के लिए मानवीय विशेषज्ञता और ज्ञान अभी भी अनिवार्य है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: हर मुस्कुराहट के पीछे खुशी नहीं होती। अगर मन उदास है तो छुपाइए मत, बात कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। अगर डिप्रेशन है तो उसे दूर भगाइए, अपनों से जुड़िए। इसी संदेश के साथ सुनती रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास सार शे पंकज। एक अच्छी वाली बात, जीवन में बस वही वास्तविक असफलता है जिससे आपने सीख नहीं ली। देखिए, सीधा सा मतलब है आपको असफलता कभी ना कभी फेस तो करनी पड़ती है, लेकिन उस असफलता के बाद अगर आप सीखे नहीं तो वाकई में फिर वो आपकी वास्तविक असफलता है, क्योंकि एक तो आप पहले ही अनसक्सेसफुल हो गए और अपनी असफलता को सफलता में कैसे बदलना है, उस कमी को कैसे पूरा करना है, ये भी आपने नहीं सीखा, तो ये हुई आपकी वास्तविक असफलता। सो इसीलिए अपनी असफलताओं से सीखिए और आगे बढ़िए। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज और लाइव आपसे मेरी बातें हो रही हैं। समय की बात करूं तो ठीक 6:15 और 6 सेकंड हो चुके हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। सुन लो जरा, अभी आपने सुना था फ्रॉम द मूवी एक दीवाना था। एमी जैक्सन इसमें नजर आती है और साथ ही साथ प्रतीक पप्पड़ भी नजर आते हैं और देखी थी लोगों ने मूवी और ठीक ठाक भी चली थी। बाकी आपसे मैं ये जरूर कहता रहता हूँ कि कुछ कहना हो, कुछ बताना हो तो जरूर कहा कीजिए, बताया कीजिए और कहने बताने के लिए आप हमारे सोशल हैंडल्स पर भी चाहे तो आ सकते हैं। एंड कुछ समय पहले मैंने आपसे अच्छी बात की और आज भाषा जो है अनुवाद दिवस भी था उसके बारे में बात की थी। बाकी आगे आपकी फरमाइशों का जोन भी थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स भी मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा, तो वो फैक्ट्स भी सुनिएगा एंड उसके बाद आपकी फरमाइशों का जोन शुरू होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, मतलब आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। फिलहाल जाना कहीं नहीं है, बस ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। अच्छा, कुछ लोगों में आदत होती है कि ट्रैवल करते टाइम वो अपने मुंह में चिंगम या च्युइंगम अगर आप कहते हो तो वो जरूर रखकर चलते हैं, है ना। जब तक उनका सफर पूरा नहीं होता उनके मुंह से वो निकलती ही नहीं है। वैसे बच्चों को इससे दूर रहने के लिए कहा जाता है ना, और दूर रहना भी चाहिए, लेकिन बड़ों के लिए एक फायदे वाली बात है इसमें। हाँ, अब यार है या नहीं वो आप जाकर कंफर्म वैसे कर सकते हैं इंटरनेट पर, लेकिन एक रिसर्च हमें बताती है कि चिंगम चबाने से मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में हमारे रक्त संचार जो होता है वो तेज हो जाता है, जिससे याददाश्त बढ़ाने की जो हमारी क्षमता होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें हमें मदद मिलती है उसको इंक्रीज करने के लिए। वेल, आपके पास भी ऐसा ही कोई मजेदार फैक्ट है तो आप बिना देर किए मुझ तक पहुंचा सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के ऑफिस

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और फिलहाल अगला सॉन्ग जो हम सुनने जा रहे हैं, इस सॉन्ग को सुनेंगे हम हमारे लिसनर अविरल की रिक्वेस्ट पर। आइए सुनते हैं।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920085।

घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। इसीलिए हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, जिंदगी बचाने के लिए पहनिए। स्पीड पर लगाम, सुरक्षा को सलाम। सुरक्षित रहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजादीन रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर्ष पंकज। और दिमाग खराब, अभी आपने सुना मिस पूजा की वॉइस में, और कितने मतलब भास्की वॉइस है इनकी और कितना कमाल का गाती हैं, पसंद करते हैं लोग इनका गाना। एंड मैं कह रहा था कि फरमाइश जोन शुरू होने वाला है, तो फरमाइशें आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ऋचा की रिक्वेस्ट इस वक्त मेरे पास आई है, जो एक सपना सुनना चाह रही हैं अंबर वशिष्ठ की वॉइस में। तो आइए उस सॉन्ग को भी प्ले करते हैं, एंड मुझे क्विज भी आपसे करना है, तो मैं क्विज भी आपसे करूँगा थोड़े समय बाद। आप जाइए कहीं मत, यूं ही जुड़ते रहिए और आगे भी जुड़ते रहिए मतलब, और सुनते रहिए आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने बंदा आर्ष पंकज के साथ। मैं यूं यहीं पर शो चलता रहेगा।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। और अभी एक क्विज हम आपसे कर लेते हैं। क्विज बहुत आसान सा है लेकिन एक कंडीशन के साथ है। पहले क्विज आपको बताता हूं, फिर आपको कंडीशन भी बताऊंगा। तो जी आज के क्विज में

आपको मुझे बताना है कि शून्य की खोज किसने की थी। अगर आपके पास जवाब है तो आप मुझे अपना जवाब भेज सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। अब बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन ये है कि आपको जवाब मुझे सबसे पहले देना है और आपका जवाब भी सही होना चाहिए। और अगर ये दोनों ही चीजें होती हैं तो आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो देर मत कीजिए, फटाफट से आप मुझे अपना जवाब भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा म्यूजिकल ब्रेक के दौरान।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास आरजे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। और अभी थोड़े टाइम पहले आपसे मैंने किया था हमारा आज का क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि शून्य की खोज किसने की थी। और मेरी कंडीशन के मुताबिक जो जवाब मुझे सबसे पहले आया है और बिल्कुल करेक्ट आया है, ये जवाब आया है मुझे रविंदर का, जिन्होंने मुझे बताया है कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। वेल, रविंदर, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने जवाब भी सबसे पहले दिया है, तो इसके लिए आपको मिलता है आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: हमारे शहर की धड़कन, हमारी अपनी आवाज, आपके हर संगीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं, इसीलिए कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: एक प्लास्टिक की थैली को खत्म होने में सालों लगते हैं, पर ये हमारी धरती को पल भर में बीमार कर देती है। इसीलिए कोशिश करें और हमेशा कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। प्रकृति बचाएं, प्लास्टिक हटाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: गल ही नहीं तू झूठी सी ते तेरे वादे कच्चे निकले पर दुख हुंदा कम लिए कि बस लोग सच्चे निकले।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: अमरिंदर गिल की वॉइस में ट्रैक है एंड इस ट्रैक को हम सुन रहे हैं राहुल की रिक्वेस्ट पर, तो आइए सुनते हैं।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हमने यहाँ पर आपके लिए प्ले किए और आपसे बात भी की, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मिलेंगे सेम टाइम सेम शो पर, तब तक रखिए अपना ख्याल, अपने आसपास की साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, अपने ख्याल रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। जब भी टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट लगाइएगा, फोर व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाइएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए यूं ही आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM को। मैं आपका अपना बिंदास आरजे मिलता हूं आपसे जल्द ही अगले शो में।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।